नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम 9 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य, संस्कृति और त्योहार को लेकर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बता ही रही हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच। आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागड़ रेडियो पर, क्योंकि यहां आपकी आवाज है सबसे खास। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: ભાઈને બોનો, આપે કારે વિચાર કર્યો હે કે જૈયા પેડની છાવ મે આપણે રહ યા આપણે ની કેટલી શાંતિ મળે હે, જીની હવા મે આપણે હાલ હ ઈ ભી આપડા થકી કઈ આશ રાખે હે। હોવે અગર પેડ ને રહેંગા તો આપણે હરતે જીવંગા, પ્રકૃતિ આપણી જરૂરત નથી બલ્કિ આપણી જિમ્મેદારી હે। એક પેડ લગાડંગા, પાણી ને બચાડંગા ને આપણે ધરતી ને જીવન દાન આલંગા।
5: હોવે પ્રકૃતિ ને બચાવો, ભવિષ્ય ને હદારો।
4: હોવે આજે નાના નાના કદમ હે એ આબાવાળા કાલ ને બદલાવ ની શરૂઆત હે।
3: વાગડ રેડિયો વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों को स्थानीय संस्कृति, लोकगीत और लोक कलाओं से जोड़ना क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है वही पेड़ हर मौसम में मजबूती से खड़ा रहता है।
0: जी हाँ,
1: ठीक इसी तरह जो बच्चा अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं और अपने लोक जीवन से जुड़ा रहता है उसका व्यक्तित्व भी मजबूत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा होता है। आज के समय में जब बच्चे मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल मनोरंजन की दुनिया में तेजी से जुड़ रहे हैं तब उन्हें अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने लोकगीतों की मधुरता और अपनी लोक कथाओं की सीख से जोड़ना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को स्थानीय संस्कृति, लोकगीत और लोक कथाओं से जोड़ना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी हम सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र की अपनी पहचान होती है, उसकी बोली, पहनावा, त्योहार, रीति रिवाज, लोकगीत, लोक नृत्य और लोक कथाएं मिलकर उसकी संस्कृति का निर्माण करते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, यही सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। यदि बच्चे इससे दूर हो जाए तो धीरे धीरे हमारी परंपराएं केवल किताबों तक ही सीमित होकर रह जाएंगी। अंजलि जी,
1: जी जी,
0: इसलिए बच्चों को बचपन से ही अपनी स्थानीय संस्कृति से परिचित कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि लोकगीत जो है वो केवल गाने नहीं होते बल्कि उनमें समाज का इतिहास होता है, प्रकृति के प्रति प्रेम होता है, रिश्तों की मिठास होती है और मेहनत, सम्मान और जीवन के अनुभव छिपे हुए होते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, इनमें ईमानदारी, साहस, सहयोग, दया, सत्य, प्रकृति प्रेम, बुद्धिमानी जैसे अनेक जीवन मूल्य सहज रूप से सिखाए जाते हैं। श्रोता साथियों, जब दादा दादी, नाना नानी या परिवार के बड़े बच्चों को

0: कशिश के बच्चे अपनी भाषा बोली के प्रति सम्मान सीख पाते हैं। जब वे अपनी मातृभाषा में लोकगीत गाते हैं या लोक कथाएं सुनते हैं तो उनका भविष्य ज्ञान भी समृद्ध होता है।
1: जी हाँ।
0: इससे संवाद कौशल, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास हो पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, वहीं अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई सुंदर परंपराएं जीवित हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि फसल कटाई के गीत, वर्षा के स्वागत के गीत, त्योहारों के लोकगीत, पारंपरिक खेल और सामूहिक उत्सव, ये सभी चीजें श्रोता साथियों बच्चों को सामाजिक जीवन का महत्व सिखाते हैं। इन गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों में सहयोग, अनुशासन, सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है।
0: जी हाँ।
1: अंजलि जी, इन सभी चीजों में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि माता पिता सप्ताह में एक दिन बच्चों को लोक कथा सुनाए, दादा दादी अपने बचपन की कहानियां साझा करें, त्योहारों का महत्व समझाएं और पारंपरिक गीतों से परिचित कराएं तो बच्चे स्वाभाविक रूप से अपनी संस्कृति के करीब आएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और ये जो जुड़ाव है वो किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि आनंद और अपनत्व के साथ होना चाहिए साथियों।
0: बिल्कुल कशिश, अब यही बात आती है कि विद्यालय भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत प्रतियोगिता, लोक कथा वाचन, स्थानीय कलाकारों से संवाद और पारंपरिक खेलों का आयोजन बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकता है। सामुदायिक रेडियो भी इसमें भूमिका निभा सकता है। रेडियो पर स्थानीय बोली में लोकगीत, बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई लोक कथाएं, लोक कलाकारों के अनुभव, पारंपरिक ज्ञान पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसा कि हम भी हमारे वागड़ रेडियो के माध्यम से श्रोता साथियों को ढेर सारी जो परंपरागत चीजें हैं उनके बारे में हमेशा अवगत करवाते रहते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी।
0: तो श्रोता साथियों, इससे बच्चे युवा दोनों अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रह सकते हैं। इससे संस्कृति का संरक्षण भी होता है और नई पीढ़ी तक उसका सहज हस्तांतरण भी होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और पैरसिक गीत के साथ में।
0: जी हाँ।
1: तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे आधुनिकता से दूर रहें, बल्कि यह है कि वे आधुनिक शिक्षा और तकनीक के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी समझें। आधुनिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को भूल जाना कभी भी प्रगति का संकेत नहीं हो सकता।
1: जी हाँ।
0: जिस बच्चे को अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है, वह दूसरे लोगों की संस्कृति का सम्मान करना भी सीखता है। जब बच्चे कशिश लोकगीत में गाते हैं, लोक कथाएं सुनते हैं, अपने क्षेत्र के त्योहारों में भाग लेते हैं और स्थानीय परंपराओं को समझते हैं, तब उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपने समाज के प्रति अपनापन बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: यही अपनापन आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो जब बच्चे लोकगीत गाते हैं, लोक कथाएं सुनते हैं और अपने क्षेत्रों के त्योहारों में भाग लेते हैं अंजलि जी, और साथ ही स्थानीय परंपराओं को समझते हैं, तब उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपने समाज के प्रति अपनापन बढ़ता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इस प्रकार स्थानीय संस्कृति, लोकगीत और लोक कथाएं केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी विद्यमान है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आधुनिक होने के साथ साथ संवेदनशील, संस्कारी, आत्मविश्वासी और अपनी पहचान पर गर्व करने वाले नागरिक बने साथियों, तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से अवश्य उन्हें जोड़ना होगा।
0: बिल्कुल,
1: यही जुड़ाव उन्हें जीवन भर अपनी जड़ों से जुड़े रहने की शक्ति देगा और साथ ही समाज को भी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाए रखेगा। अंजलि जी,
0: जी हाँ, यही कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि हर समाज की सबसे बड़ी पहचान उसकी संस्कृति होती है और हर संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत उसकी नई पीढ़ी होती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि बच्चे अपनी भाषा, लोकगीत, लोक कलाओं और परंपराओं को जानेंगे, तभी वे अपने समाज की असली पहचान को समझ पाएंगे।
1: जी हाँ,
0: यह जुड़ाव उन्हें केवल अतीत की जानकारी नहीं देता, बल्कि वर्तमान में सही निर्णय लेने और भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा भी देता है। अपनी संस्कृति को जानने वाला बच्चा दूसरों की संस्कृति का भी सम्मान करना सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उसे विविधता में एकता का महत्व समझ में आ जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में बच्चों के पास नई नई जानकारियों की कमी नहीं है, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ, लोकगीत और लोक परंपराएं उनसे धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि यह दूरी बढ़ती रही कशिश, तो आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास, अपने लोक नायकों और अपनी बोलियों और अपने सामाजिक मूल्यों से अनजान हो सकती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए यह समय केवल चिंता करने का नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय और समाज के स्तर पर छोटे छोटे प्रयास शुरू करने का है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों, तो घर में दादा दादी, नाना नानी के अनुभव जो होते हैं, साथ ही गांव के बुजुर्गों की बातें, पारंपरिक त्योहारों की कहानियाँ, खेत खलियानों से जुड़ी लोक धुनें साथियों, ये सभी बच्चों के लिए किसी जीवित पुस्तक से कम नहीं है। इन अनुभवों के माध्यम से बच्चे केवल जानकारी नहीं प्राप्त करते, बल्कि धैर्य, सहयोग, प्रकृति प्रेम, परिवार का महत्व और सामुदायिक जीवन के मूल्य भी सीखते हैं अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: और ये सीख उन्हें एक संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनाती है। साथियों, हम सभी को यह समझना होगा कि आधुनिक शिक्षा और तकनीक का स्वागत करते हुए हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को साथ लेकर चलना ही वास्तविक प्रगति है। यदि बच्चा कंप्यूटर चलाना भी जानता हो और अपनी मातृभाषा का लोकगीत भी गा सके, यदि वह नई तकनीक का उपयोग भी करे और अपने गांव की परंपराओं का सम्मान भी करे,
0: जी जी,
1: तब भी उसका विकास वास्तव में संतुलित माना जाएगा अंजलि जी, और यही संतुलन उसे वैश्विक सोच के साथ स्थानीय पहचान भी देता है।
0: जी हाँ कशिश, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि बच्चों को स्थानीय संस्कृति, लोकगीत और लोक कथाओं से जुड़ना क्यों जरूरी है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल,
0: अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़,

0: बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे
1: होवे। आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
7: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
2: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस युवा के पास सपने हैं, वही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं।
1: जी हाँ कशिश, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
0: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि जागृति जी, हम कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से जब भी बातचीत करते हैं तो एक नया विषय हमारे बीच रहता है।
1: बिल्कुल,
0: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज युवा दिवस है, तो इसी उपलक्ष्य में श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे युवा शक्ति, परिवर्तन, नवाचार और नेतृत्व शक्ति को लेकर।
1: बिल्कुल कशिश, ये विषय केवल युवाओं की क्षमता की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि अगर युवा सही दिशा, सही सोच और सकारात्मक उद्देश्य के साथ आगे बढ़े तो वे समाज, देश और दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज हम इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि युवा परिवर्तन के वाहक कैसे बन सकते हैं, नवाचार क्यों जरूरी है, नेतृत्व का वास्तविक अर्थ क्या है और एक जिम्मेदार युवा के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इन सभी बातों को लेकर आज हम कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना युवा साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं हम पहले।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं युवा शक्ति, परिवर्तन, नवाचार और नेतृत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कशिश, भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की बड़ी आबादी युवा है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक अवसर है। अगर युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए तो भारत विकास, विज्ञान, शिक्षा, कृषि, तकनीक, पर्यावरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन केवल युवा होना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि युवाओं में सही सोच हो, जिम्मेदारी हो, अनुशासन हो, सीखने की इच्छा हो, समाज के प्रति संवेदनशीलता हो। यही गुण उन्हें परिवर्तनकर्ता, नवाचारी और प्रभावी नेता बनाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि युवा शक्ति के वास्तविक अर्थ को समझना भी हमारे लिए जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि युवा शक्ति का मतलब होता है केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि इसका मतलब है नई सोच रखने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों में समाधान ढूंढने की क्षमता, बदलाव को स्वीकार करना, समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक रहना साथियों, दूसरों को प्रेरित करना और जिम्मेदारी निभाना जागृति थी।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जब युवा अपने ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं तो वास्तविक युवा शक्ति दिखाई देती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम अक्सर ये सोचते हैं कि समाज बदले, व्यवस्था बदले, लोग बदले, लेकिन हर बड़ा परिवर्तन किसी एक व्यक्ति की सोच से शुरू होता है।
1: जी हाँ,
0: अगर एक युवा समय का सम्मान करेगा, ईमानदारी को अपनाएगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, शिक्षा को महत्व देगा, नशे से दूर रहेगा, सामाजिक जिम्मेदारियों को अपनाएगा, तो वो अपने आसपास सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बदलाव का अर्थ हमेशा बड़ा आंदोलन नहीं होता है दोस्तों। कई बार छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े परिवर्तन की नींव बनती है कशिश।
1: जी हाँ जागृति जी, साथ ही हम कह सकते हैं कि नवाचार का होना भी जरूरी है, क्योंकि आज का युग नवाचार यानी कि इनोवेशन का युग है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, नवाचार का मतलब केवल नई मशीन बनाना नहीं है, किसी समस्या का नया सरल और उपयोगी समाधान भी नवाचार ही है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि किसानों के लिए खेती की तकनीकें, पानी बचाने के नए तरीके, डिजिटल शिक्षा, स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और ग्रामीण महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर।
0: बिल्कुल
1: साथियों, युवा अपनी कल्पना शक्ति और तकनीकी समझ के कारण समाज की अनेक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि नवाचार केवल शहरों में होता है, जबकि ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है श्रोताओं। आज ग्रामीण युवा अपनी आधुनिक खेती अपना रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग भी कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग भी शुरू कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह के साथ काम भी कर रहे हैं और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचा रहे हैं। गांव का युवा अगर अपने संसाधनों को समझकर काम करे तो वो अपने क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से लोग नेतृत्व का अर्थ केवल पद या अधिकार समझते हैं कशिश, लेकिन वास्तविक नेतृत्व तो वो है जो दूसरों की बात को सुने, सबको साथ लेकर चले, कठिन समय में समाधान निकाले, स्वयं उदाहरण बने, समाज के हित को प्राथमिकता दे।
1: जी हाँ,
0: एक अच्छा नेता आदेश नहीं देता बल्कि प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी बहुत अच्छी चल रही है परिवर्तन, नवाचार और नेतृत्व को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
0: जी हाँ,
1: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें हमारी आपसे बहुत अच्छी चल रही है साथियों, नवाचार और परिवर्तन युवा शक्ति को लेकर, यही जैसा कि गीत से पहले हम जान पाए थे कि परिवर्तन की शुरुआत होती कैसे है और नवाचार क्यों जरूरी है, ये भी हमने जाना था जागृति जी। यही अगर बात करें कि युवाओं में नेतृत्व कैसे विकसित हो सकता है, तो कहा जाता है कि नेतृत्व एक दिन में नहीं आता। इसके लिए आत्मविश्वास, संवाद कौशल, टीम भावना, निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत के साथ साथ सकारात्मक सोच का होना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, विद्यालय, कॉलेज, स्वयंसेवी संगठन, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सामुदायिक कार्यक्रम नेतृत्व विकसित करने के एक अच्छे माध्यम हो सकते हैं युवाओं के लिए।
1: बिल्कुल कशिश, जैसा कि आपने बताया कि युवाओं में नेतृत्व के गुण कैसे विकसित कर सकते हैं, यही अगर शिक्षा और कौशल की भूमिका को लेकर हम बात करें, तो आज के समय में केवल डिग्रियां प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। युवाओं को अपने ज्ञान के साथ साथ कौशल भी विकसित करने होंगे। हम देखते हैं कि संवाद कौशल, डिजिटल समझ, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, टीम में काम करने की क्षमता और समय प्रबंधन, ये सारे कौशल युवाओं को और अधिक सक्षम बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो युवा को प्रश्न पूछना है, विचार करना है और समस्याओं के समाधान खोजना सिखाए।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षित और कुशल युवा अपने अवसर खोज सकता है कशिश, और दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: आज हम देखते हैं कि तकनीक युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आज शिक्षा, जानकारी और नए कौशल सीखने के अनेक अवसर हमें उपलब्ध करवा रही है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन तकनीक का उपयोग सोच समझकर करना बहुत जरूरी है। केवल मनोरंजन या समय बिताने के लिए तकनीक का उपयोग हम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए गलत है।
0: बिल्कुल,
1: तकनीक का उपयोग तो हमें कुछ नया सीखने के लिए, रचनात्मक कार्य करने के लिए, स्थानीय जानकारी साझा करने के लिए और समाज के लिए उपयोगी पहल करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: डिजिटल दुनिया में जानकारी बहुत तेजी से फैलती कशिश, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए युवा के लिए ये भी जरूरी है कि वो किसी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता जांचने की आदत विकसित करें।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों, परिवर्तन केवल बड़े शहरों या बड़ी संस्थाओं से नहीं आता।
1: बिल्कुल,
0: बल्कि छोटे गांव, स्कूलों, परिवारों और समुदायों से भी शुरू हो सकता है। जब युवा हमारे स्थानीय समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए आगे आते हैं जागृति जी, तभी विकास वास्तव में जन भागीदारी वाला बनता है।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता केवल डिग्री हासिल करने की नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन कौशल विकसित करने की भी है। ऐसे में संवाद, सहयोग, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच और नैतिक मूल्यों का संतुलन ही एक युवा को प्रभावशाली बनाता है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, हम सभी को ये समझना होगा कि नेतृत्व का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने का अवसर देना भी है।
1: जी हाँ,
0: यदि हर युवा अपने क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल करने का संकल्प ले ले, जैसे किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, जल संरक्षण का अभियान चलाना, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना या डिजिटल साक्षरता फैलाना, तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: यही जागरूकता एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की पहचान बन सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा शक्ति के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम देखते हैं कि आज हमारे युवा साथी प्रतियोगिता, करियर को लेकर चिंता, असफलता का डर, समय का गलत उपयोग, सामाजिक दबाव और भविष्य को लेकर अनिश्चितता, ये सारी परिस्थितियां युवाओं को प्रभावित कर रही है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे समय में श्रोता साथियों, बहुत जरूरी है कि युवा अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति की यात्रा बहुत अलग होती है, सफलता का रास्ता भी हर किसी के लिए अलग हो सकता है। इसीलिए असफलता आने पर रुक जाना समाधान नहीं है।
0: जी हाँ,
1: असफलता से सीखना और नई कोशिश करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
0: बिल्कुल,
1: परिवार, शिक्षक, समुदाय का सहयोग भी युवाओं के आत्मविश्वास को मजबूत करता है।
0: जी हाँ,
1: साथ ही हम आपको कहना चाहेंगे श्रोताओं कि परिवर्तन, नवाचार और नेतृत्व तीन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका संबंध बहुत गहरा है।
0: बिल्कुल,
1: परिवर्तन हमें बताता है कशिश की बदलाव बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: नवाचार हमें बताता है कि बदलाव का नया रास्ता क्या हो सकता है। नेतृत्व लोगों को उस रास्ते पर साथ देकर चलता है। अगर युवा में परिवर्तन की इच्छा है लेकिन नवाचार की सोच नहीं है, तो समाधान सीमित हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर नवाचार की सोच है लेकिन नेतृत्व नहीं है, तो अच्छा विचार जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि नेतृत्व है लेकिन सकारात्मक परिवर्तन का उद्देश्य नहीं है, तो नेतृत्व का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। इसीलिए
0: हाँ,
1: एक सशक्त युवा वो है जो सोचे भी, नया करे भी और दूसरों को साथ लेकर आगे भी बढ़े।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कहा जा सकता है युवा साथियों कि युवा होना केवल एक आयु नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यह वह समय होता है जब सपनों को लक्ष्य में बदला जा सकता है। चुनौतियों को अवसर बनाया जा सकता है और विचारों को वास्तविक परिवर्तन में बदला जा सकता है। जागृति जी, एक जागरूक, शिक्षित और संवेदनशील युवा अपने परिवार, अपने समाज और देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में साथियों, हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना है कि हम अपने ज्ञान, कौशल, समय और ऊर्जा का उपयोग समाज की भलाई के लिए ही करेंगे। हम अपने गांव, अपने शहर, अपने देश को बेहतर बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।
1: जी हाँ।
0: हम नशा मुक्त, पर्यावरण के प्रति सजग और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। जब हर युवा, जागृति जी, अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ेगा, तभी एक सशक्त, आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा।
1: बिल्कुल कशिश, इसलिए हम ऐसी युवा शक्ति का निर्माण करें जो केवल अपने लिए सफलता न खोजे बल्कि अपने समाज के लिए समाधान खोजे, जो केवल बदलाव की बात न करे बल्कि बदलाव की शुरुआत करे, जो केवल नेतृत्व का पद न चाहे बल्कि जिम्मेदारी उठाने का साहस रखे, क्योंकि युवा की सोच में परिवर्तन की चिंगारी होती है, उसके विचार में नवाचार की रोशनी होती है, उसके कदमों में नेतृत्व की ताकत होती है। जब यही तीनों एक साथ आते हैं तो समाज की दिशा बदलती है और देश की गति बढ़ती है। यही युवा शक्ति की पहचान है, यही नवाचार की राह है और यही सच्चे नेतृत्व की शुरुआत है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल।
0: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं।
1: जी हाँ।

0: इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपड़ो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किमकी घेरे कोई आपड़ो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है अनुशासन को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि अंजलि आज हमारे श्रोता साथियों को हम बताने वाले हैं कि सफलता को अक्सर हम प्रतिभा, मेहनत, ज्ञान और अवसर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इन सबको सही दिशा देने वाली एक ऐसी शक्ति भी है जो दिखाई नहीं देती, वो है अनुशासन। अनुशासन वो आदत है श्रोता साथी जो हमें सही काम को सही समय पर और लगातार करने की प्रेरणा देती रहती है। बड़ी उपलब्धियां हमें अचानक नहीं मिलती, वे रोज की छोटी छोटी अनुशासित कोशिशों से बनती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है, अनुशासन हर सफलता की अदृश्य ताकत है। जैसा कि अंजलि, सपने हर कोई देखता है, लक्ष्य हर कोई बनाता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिस शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसका नाम है अनुशासन। ये सफलता की वो अदृश्य ताकत है जो बिना शोर किए इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, मनुष्य के जीवन में सफलता केवल बड़े सपने देखने से नहीं मिलती।
0: बिल्कुल,
1: सपनों को लक्ष्य में बदलना, लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करना और कठिन परिस्थितियों में भी अपने कदमों को सही दिशा में बनाए रखना आवश्यक होता है। इस पूरी यात्रा में एक ऐसी शक्ति हमारे साथ चलती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारी हर उपलब्धि के पीछे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: बिल्कुल,
1: इस शक्ति का नाम है अनुशासन। जी हाँ श्रोता साथियों, हम अक्सर सफल लोगों को देखकर उनकी प्रतिभा, मेहनत और उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, लेकिन जागृति जी, उनकी सफलता के पीछे छिपी नियमितता, अनुशासन पर उतना ध्यान नहीं देते। वास्तव में श्रोता साथियों, अनुशासन वह आदत है जो व्यक्ति को यह सिखाती है कि मन चाहे या न चाहे, परिस्थितियां अनुकूल हो या विपरीत, हमें अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही

0: अपने वादे को निभाता है तो ये भी अनुशासन का ही उदाहरण है। इसीलिए अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नियम नहीं है बल्कि भीतर से विकसित होने वाली आदत है।
1: जी हाँ जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सफलता के लिए प्रतिभा जरूरी हो सकती है, लेकिन केवल प्रतिभा के भरोसे सफलता प्राप्त करना कठिन है। कह सकते हैं श्रोता साथियों कि किसी व्यक्ति में बहुत अच्छी क्षमता हो लेकिन वह अपने समय का सही उपयोग न करे, काम को टालता रहे और अपने लक्ष्य के प्रति नियमित न रहे तो उसकी प्रतिभा भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी।
0: बिल्कुल।
1: इसके विपरीत जागृति जी, सामान्यतः क्षमता वाला व्यक्ति यदि नियमित रूप से मेहनत करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपने लक्ष्य के प्रति अनुशासित रहता है तो वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। यही कारण है कि सफलता में केवल यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम कितना जानते हैं बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जो जानते हैं उसे कितनी नियमितता से अपने जीवन में लागू करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध समय से होता है। समय हर व्यक्ति को बराबर मिलता है, किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अंतर केवल इस बात से पैदा होता है कि कौन अपने समय का सही उपयोग कर सकता है।
1: जी जी।
0: अनुशासित व्यक्ति अपने समय की प्राथमिकताएं तय करते हैं, वो ये समझते हैं कि कौन सा काम अभी करना जरूरी है और कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। वो जरूरी काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे युवा साथी है, श्रोता साथी है, उन्हें जीवन में समय प्रबंधन के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि पढ़ाई, खेल, परिवार, आराम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाना भी तभी संभव है जब समय का सही उपयोग किया जाए। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में व्यवस्था और स्पष्टता विकसित करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि किस तरीके से अनुशासन हर सफलता की अदृश्य ताकत है।
0: बिल्कुल।
1: इसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से यह हमें समय प्रबंधन और अनुशासन के बारे में सिखाता है, ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले जागृति जी हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को बताते हैं कि छोटी आदतें बनाती है बड़ा व्यक्तित्व।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, अनुशासन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, यह रोज की छोटी छोटी आदतों से विकसित होता है। समय पर उठना, अपने कार्यों की सूची बनाना, पढ़ाई या काम के लिए निश्चित समय निर्धारित करना, अपने सामान को व्यवस्थित रखना, जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना और अपने लक्ष्य की नियमित समीक्षा करना, ये सभी छोटी आदतें हैं। जब व्यक्ति इन आदतों को लगातार दोहराता है तो वे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं।
1: बिल्कुल
0: यही छोटी आदतें जागृति जी भविष्य में बड़े परिणाम देती हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा श्रोता साथियों कि बड़ी सफलता अक्सर छोटी छोटी अनुशासित आदतों का ही परिणाम है।
1: जी हाँ अंजलि, मनुष्य के सामने हर दिन बहुत सारे विकल्प होते हैं। हम देखते हैं कि कभी हमें पढ़ाई करनी होती है लेकिन मन मनोरंजन करने का कहता है, कभी कोई जरूरी काम पूरा करना होता है लेकिन उसे टालने का मन करता है।
0: बिल्कुल
1: ऐसे समय में श्रोता साथियों हमें अपने मन को सही दिशा देनी होगी। हमारे मन पर हमें आत्मनियंत्रण रखना होगा। अनुशासन हमें ये सिखाता है कि हर इच्छा को हमें तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हमें अभी अच्छी लग सकती है लेकिन हमारे भविष्य के लिए जरूरी नहीं होती कि वो अच्छी हो। इसी तरह दूसरी ओर कुछ काम कठिन लग सकता है लेकिन वही हमारे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
0: जी जी।
1: जो व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवहार और इच्छाओं को अपने भविष्य के लक्ष्य के अनुसार नियंत्रित करना सीख जाता है उसके लिए सफलता की राह आसान हो जाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार निरंतरता है। किसी काम को एक दिन बहुत मेहनत से करना और फिर कई दिनों तक छोड़ देना उतना प्रभावी नहीं होता जितना रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक दिन 10 घंटे पढ़ाई करे और अगले कई दिनों तक किताबें न खोले तो उससे बेहतर कि वह रोज कुछ घंटे नियमितता से पढ़ाई करे।
1: बिल्कुल
0: नियमितता ज्ञान को मजबूत करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसी तरह किसी कौशल को सीखना हो, खेल में बेहतर प्रदर्शन करना हो या कोई रचनात्मक कार्य करना हो श्रोता साथियों तो निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अनुशासन व्यक्ति को इसी निरंतरता से जोड़ता है।
1: बिल्कुल इसी तरह हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे अंजलि कि जैसे कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी हमें असफलता मिलती है, कभी रास्ता हमारे लिए आसान हो जाता है, कभी बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आती है।
0: बिल्कुल
1: इसी तरह श्रोता साथियों ऐसे समय में जो अनुशासन होता है अंजलि वो व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता है।
0: जी जी।
1: वो असफलता को अंतिम परिणाम मानने के बजाय एक अनुभव के रूप में देखता है। वह अपनी गलतियों को समझता है, अपनी रणनीति में बदलाव करता है और फिर प्रयास शुरू कर देता है। इसी तरह अनुशासन हमें ये भी सिखाता है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होती लेकिन अपनी प्रतिक्रिया और अपने प्रयासों को नियंत्रित करना हमारे हाथ में ही होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, विद्यार्थी जीवन भविष्य की नींव रखने का समय होता है। इस दौरान विकसित हुई आदतें जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए एक अनुशासित विद्यार्थी केवल परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं करता बल्कि पूरे वर्ष नियमित रूप से सीखने का प्रयास करता है।
1: बिल्कुल
0: वह शिक्षकों का सम्मान करता है, समय पर पूरा कार्य करता है और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश भी करता है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि विद्यार्थी हर समय केवल पढ़ाई करता रहे, पर्याप्त आराम, खेल, मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताना भी आवश्यक है। सही अनुशासन जीवन के सभी क्षेत्र में संतुलन बनाना सिखाता है।
1: बिल्कुल इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि श्रोताओं किसी भी देश की ऊर्जा और शक्ति युवा ही होते हैं। उनके पास नए विचार होते हैं, नई तकनीक सीखने की क्षमता होती है और बदलाव लाने का उत्साह होता है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन अंजलि अगर ये ऊर्जा सही दिशा में न जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आज के डिजिटल युग में युवाओं के सामने बहुत सारे आकर्षण है, सोशल मीडिया है, मनोरंजन है, लगातार मिलने वाली नई सूचनाएं ध्यान को आसानी से भटका सकती है।
0: जी जी।
1: ऐसे समय में अनुशासन का महत्व और भी बढ़ जाता है। युवाओं को तकनीक का उपयोग अपने ज्ञान कौशल और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए करना होगा। उन्हें अपने समय की प्राथमिकताएं तय करनी होगी और अपने भविष्य के लक्ष्य के प्रति उन्हें गंभीर रहना होगा।
0: बिल्कुल
1: एक अच्छा नेता केवल दूसरों को निर्देश नहीं देता बल्कि स्वयं भी नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित होता है वह दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि परिवार में माता पिता का अनुशासन बच्चों को प्रभावित करता है। विद्यालय में शिक्षक का समय और नियमों के प्रति सम्मान विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। किसी संस्था में जिम्मेदार व्यक्ति की कार्यशैली पूरी टीम पर प्रभाव डालती है। इसी प्रकार श्रोता साथियों, अनुशासन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है बल्कि अच्छे नेतृत्व की भी आधारशिला है।
1: जी हाँ।
0: यदि प्रत्येक व्यक्ति जागृति जी अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हो तो समाज में अनेक समस्याएं स्वतः ही कम हो सकती है। यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई रखना, पानी और बिजली की बचत करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सामाजिक अनुशासन के उदाहरण है।
1: बिल्कुल,
0: देश की प्रगति केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिक का अनुशासन भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता है श्रोता साथियों, तो समाज अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित और मजबूत बन पाता है।
1: जी हाँ अंजलि, कई बार अनुशासन को कठोर नियम या प्रतिबंध समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तविक अनुशासन डर पर आधारित नहीं होता, वो जिम्मेदारी और आत्मसम्मान पर आधारित होता है। अगर हम केवल किसी के डर से नियमों का पालन करते हैं तो अवसर मिलते ही नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि नियम हमारे और समाज के हित के लिए हैं, तब हम उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानकर अपनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए सच्चा अनुशासन बाहर से थोपने की चीज नहीं बल्कि भीतर से विकसित करने की आदत है।
0: बिल्कुल जागृति जी, मेहनत और अनुशासन एक दूसरे के पूरक है। मेहनत व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, जबकि अनुशासन उस मेहनत को सही दिशा में निरंतरता देता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि मेहनत बिना योजना के हो तो ऊर्जा व्यर्थ हो सकती है, यदि योजना हो लेकिन उसे लागू करने का अनुशासन न हो तो लक्ष्य केवल कागज पर रह सकता है। इसलिए सफलता के लिए मेहनत के साथ सही दिशा और नियमितता भी जरूरी है। यही कारण है श्रोता साथियों कि जीवन में केवल यह तय करना पर्याप्त नहीं है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं।
1: जी हाँ।
0: हमें यह भी तय करना पड़ता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोज हमें क्या क्या करना होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो अंत में बस यही कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि अनुशासन वो दीपक है जो सफलता की राह में लगातार प्रकाश देता है। इसकी रोशनी तेज नहीं होती लेकिन ये लंबे समय तक रास्ता दिखाती है।
0: जी जी।
1: इसलिए अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो केवल सपना देखने तक सीमित न रखे, आज से छोटी सी शुरुआत करें, अपनी आदतों को व्यवस्थित करें और अपने प्रयासों में निरंतरता लाएं।
0: जी जी।
1: क्योंकि सफलता का शोर दुनिया सुनती है लेकिन उसके पीछे चलने वाले अनुशासन की खामोशी मेहनत केवल वही व्यक्ति समझता है जिसने उसे जिया है। और अंततः यही कहा जा सकता है कि प्रतिभा हमें शुरुआत दे सकती है, अवसर हमें रास्ता दे सकता है और मेहनत हमें आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अनुशासन ही वो अदृश्य ताकत है जो हमें लगातार मंजिल की ओर ले जाती है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी बातें कार्यक्रम में ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले मनोरंजन कर लेते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाइयों ने बोनो जईवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ू बोनों रिश्तो है जे जंगल में हमसे हैं इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम घूमर हमर वावारी अमर हित बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाइयों बहनों, आप सब हमले रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूं हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: होवे भाइयों बहनों, लेने हासिर थे के हां कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाते। भाइयों बहनों, आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि हरियाली अमावस्या नु हूं महत्व है ने हरते आज दाड़ो है ये अपने बल्ले घणो खास है। अपने देखो हो मनीषा बुन के जिम की आज हरियाली अमावस है ये केवल पंचांग नी तिथि नो एक दाड़ो नथी बल्कि अपने प्रकृति ने प्रति कृतज्ञता खेती किसानी नवी शुरुआत एने साथे पेड़ पौधों नी देखभाल ने अपनी जे लोक परंपराए है एना ने जीवित राखवानु एक अवसर है। खास करीने अपने वागड़ जे क्षेत्र है आए प्रकृति ने खेती नो जे रिश्तो है ई घणो महत्वपूर्ण है। आज पर्व है ई आन में घणो विशेष स्थान राखे है। आपणे देखो के जंगल खेत पहाड़ नदी तालाब पेड़ पौधो केवल प्राकृतिक संसाधन ज नथी बल्कि ग्रामीण जीवन ने संस्कृति नो अभिन्न हिस्सो भी है। ताजा आपणे कार्यक्रम में इस वाते करंगा कि हरियाली अमावस्या नो आपणी बोनन ने जीवन में हूँ महत्व है ने हरते आपणे बोन तकी आ जोड्यू तकू है ने अणा अवसर माते अपने हरती प्रकृति संरक्षण ने महिला सशक्तिकरण जे है एना ने जोड़ी शकाउ।
0: होवे अंजलि बोन, तो अणा विषय माते अपने भाई बहनों कदी कार्यक्रम ने माध्यम कदी घणा अक्कानी वाते रेंगा। कार्यक्रम ने शुरुआत में हमड़ा गीत ने मोरे करा अपनी वाते।
1: होवे तो भाई बहनों, आप हमबर तो रेजू अपड़ो रेडियो अपनी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
4: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447

0: भाई ने बोनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी हो तो बदलाव की शुरुआत हो सकती है। हाथों में ताकत हो और मन में सही दिशा तो एक युवा केवल अपना भविष्य नहीं पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर। हाजिर हो चुकी हूं श्रोता साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान को, जहां हम बात करते हैं उन विचारों की जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं और हमें अपने आसपास बहुत कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। आज का दिन हमारे देश और दुनिया के युवाओं को समर्पित है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। श्रोता साथियों, यह दिन केवल युवाओं को शुभकामनाएं देने का दिन नहीं है बल्कि यह सोचने का अवसर है कि हमारे युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और समाज उनके भीतर छिपी ऊर्जा का सही उपयोग कैसे कर सकता है। आज का हमारा कार्यक्रम का विषय रहेगा, युवा होना सिर्फ उम्र नहीं एक जिम्मेदारी है। बातें ढेर सारी रहेंगी लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने कार्यक्रम में आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है कि युवा होना सिर्फ उम्र नहीं एक जिम्मेदारी है। जी हाँ श्रोता साथियों, युवा आखिरकार होते कौन है? जब हम युवा शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने अक्सर पढ़ाई करते हुए लड़के लड़कियाँ, नौकरी की तलाश करते युवा या कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी आते हैं, लेकिन युवा होने का अर्थ केवल एक निश्चित उम्र में होना नहीं है। युवा वह है जिसके भीतर कुछ नया करने की इच्छा है, जो सवाल पूछ सकता है, जो गलत चीज को देखकर कह सकता है कि इसे बदलना चाहिए, जो समस्या के सामने बैठकर केवल शिकायत नहीं करता बल्कि समाधान खोजने की कोशिश करता है। यही युवा शक्ति है। जी हाँ साथियों, युवा शक्ति केवल बड़े शहरों में नहीं है, हमारे गांवों में भी ऐसे हजारों युवा हैं जो खेती में नई तकनीक सीख रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, छोटे व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खेलों में आगे बढ़ रहे हैं और अपने गांव में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी गांव का युवा अगर अपने खेत में नई तकनीक अपनाता है तो वो केवल अपनी खेती नहीं सुधारता, किसी युवा लड़की का शिक्षा जारी रखना केवल उसके भविष्य को नहीं बदलता है दोस्तों, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ता खोलता है। कोई युवा अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता है तो वह केवल कुछ घंटे नहीं देता, वह भविष्य तैयार करता है। जी हाँ, एक छोटी सी बात, युवा शक्ति का मतलब केवल तेज कदम नहीं, सही दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि ऊर्जा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन उस ऊर्जा को सही दिशा देना ही असली चुनौती है। जी हाँ, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि आज युवाओं के सामने अवसर भी हैं और कई सारी चुनौतियां भी हैं। जैसे कि बात करें, युवाओं के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी की कोई कमी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पास सही जानकारी चुनने की समझ भी है? जी हाँ दोस्तों, आज एक युवा कुछ ही मिनटों में दुनिया भर की जानकारी देख सकता है, लेकिन उसे मोबाइल पर वह घंटों बिना उद्देश्य के भी समय बिता सकता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी के सामने केवल अवसरों का सवाल नहीं है, सवाल है कि वह अपने अवसरों का इस्तेमाल किस दिशा में करेंगे, क्योंकि सही दिशा में किया गया कार्य ही हमें विकास की राह पर ले जाता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया युवाओं के लिए बहुत उपयोगी साधन हो सकता है। इसके माध्यम से सीख सकते हैं, नई भाषा का ज्ञान ले सकते हैं, किसी कौशल की जानकारी ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने उत्पाद या कला को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यही माध्यम समय की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इसलिए मोबाइल को अपना मालिक नहीं, अपना साधन बनाइए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मोबाइल हाथ में होना समस्या नहीं, मोबाइल का नियंत्रण हमारे हाथ से निकल जाना समस्या है। हम अक्सर कहते हैं ना दोस्तों कि देश का भविष्य युवा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई में देश का भविष्य बनाने वाले पहले युवा आज क्या कर रहे हैं? जी हाँ, क्या वह अपने घर की जिम्मेदारी समझ रहे हैं? क्या वह अपने गांव और समाज की समस्याओं को समझते हैं? क्या वह सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं? क्या वह महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं? क्या वह गलत सूचना फैलाने से पहले उनकी सच्चाई जांचते हैं? क्या वह अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं? श्रोता साथियों, युवा शक्ति का असली अर्थ यहीं से शुरू होता है। अगर इन सवालों के जवाब हर किसी के पास है कि हाँ वाकई में युवा ये सारी चीजें करते हैं, तो वही युवा और जिम्मेदारी का सच्चा अर्थ है। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि युवा होना सिर्फ उम्र नहीं है, एक जिम्मेदारी है, जिसमें हमने जाना युवा कौन होते हैं और किस तरीके से उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। जी हाँ, आज बहुत से युवा अपने भविष्य को लेकर सरकारी नौकरी से जोड़कर देखते हैं। नौकरी महत्वपूर्ण है, ये हम सभी मानते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते केवल एक नहीं होते। कृषि में कई सारे अवसर हैं, पशुपालन में अवसर हैं, हस्तशिल्प में अवसर हैं, डिजिटल काम में भी कई सारे अवसर हैं, छोटे व्यवसाय में अवसर हैं, कौशल आधारित काम में अवसर है। जरूरत है अपनी रुचि और क्षमता को पहचानने की। हर युवा का रास्ता एक जैसा नहीं हो सकता। दोस्तों, किसी दूसरे की मंजिल देखकर अपना रास्ता हमें कभी नहीं चुनना चाहिए। अपने भीतर की क्षमता पहचानिए, अपनी खुद की राह बनाइए, क्योंकि युवा अवस्था वह समय है जब सवाल पूछना भी ताकत है और नई शुरुआत करना भी। इसलिए हमारे समुदाय में कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान युवा बेहतर ढंग से आगे बढ़कर कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा से दूर बच्चे, स्वच्छता की समस्या, जल संरक्षण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, नशे से बचाव, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता, महिलाओं का सम्मान, डिजिटल जानकारी का सही उपयोग। इन विषयों पर केवल भाषण देने की जरूरत नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि एक युवा अपने छोटे से प्रयास से शुरुआत कर सकता है। मान लीजिए कि किसी गांव में 5 युवा मिलकर तय करते हैं कि वे हर रविवार को 1 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई दूसरा समूह गांव में पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। कुछ युवा मिलकर खेल गतिविधियां शुरू करेंगे। कुछ युवा बुजुर्गों के डिजिटल कामों में मदद करेंगे। देखिए, शुरुआत छोटी है लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बदलाव के लिए हमेशा भीड़ की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी 5 जागरूक युवा भी काफी होते हैं। युवा दिवस पर युवा लड़कियों की बात करना भी उतना ही आवश्यक है। आज गांव और छोटे कस्बों की बेटियां शिक्षा, खेल, विज्ञान, व्यवसाय, कला और अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी कई लड़कियों को अवसर की कमी, सामाजिक दबाव और निर्णय लेने की सीमाओं का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस बात की है श्रोता साथियों कि बेटियां परिवार को केवल सुरक्षा नहीं, विश्वास और अवसर भी दें, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, वो अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी को भी आगे बढ़ाती है। जी हाँ श्रोता साथियों, युवा और बुजुर्गों को अक्सर 2 अलग पीढ़ियों के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे से सीखें तो यह बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। बुजुर्गों के पास अनुभव है तो युवाओं के पास नई तकनीक और नई ऊर्जा है। बुजुर्ग परंपरा समझते हैं तो युवा नए रास्ते खोज सकते हैं। यदि अनुभव और ऊर्जा साथ आ जाए तो समुदाय में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा जब साथ चलते हैं तो समाज की राह आसान हो जाती है। जी हाँ श्रोता साथियों, आज युवाओं पर कई तरह के प्रभाव है। दोस्त क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कौन प्रसिद्ध है, किसके पास क्या है और कौन कहाँ घूम रहा है, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। सवाल यह है कि मैं कौन हूँ, मुझे किस तरह का इंसान बनना है। अपनी पहचान दूसरों की नकल से नहीं बनती, अपनी पहचान अपने विचार, व्यवहार और कर्मों से बनती है। इसलिए श्रोता साथियों, आप जहाँ भी हैं, खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर मेरा गाँव और मेरा परिवार और मेरे समाज में कोई एक चीज बदलने का अवसर मुझे मिले तो मैं सबसे पहले क्या बदलना चाहूंगा। इसका उत्तर कागज पर लिखिए और फिर खुद से दूसरा सवाल पूछिए कि उस बदलाव के लिए मैं आज से क्या छोटा कदम उठा सकता हूँ। यहीं से युवा शक्ति की असली शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन केवल एक छोटा सा संकल्प हम सभी ले कि हम अपने समय का सम्मान करेंगे, हम अपने शरीर और मन का ध्यान रखेंगे, हम गलत जानकारी को आगे नहीं फैलाएंगे, हम अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, हम बेटियों और महिलाओं के सम्मान को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, हम अपने गांव और आसपास के वातावरण को बेहतर रखने में योगदान देंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं करेंगे बल्कि अपने समाज के भविष्य में भी योगदान देंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है,
कि उम्र की पहचान चेहरे से नहीं विचारों से होती है। युवा वही है जिसके भीतर सीखने की चाह अभिजीवित है। जी हाँ दोस्तों, रास्ते कठिन हो तो हिम्मत बनाए रखनी होगी, अवसर कम हो तो रास्ते बनाइए। दुनिया बदलने की जल्दी मत करिए, पहले अपने हिस्से की दुनिया संवारिए। श्रोता साथियों, युवा होना जीवन का वह दौर है जब हमारे पास ऊर्जा होती है, सवाल होते हैं, नई चीजें सीखने की क्षमता होती है और अपने भविष्य को आकार देने का अवसर होता है। लेकिन इस ऊर्जा को असली कीमत तभी मिलती है जब इसे सही दिशा मिले। हमारे युवाओं को केवल यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम देश का भविष्य हो, उन्हें आज के समाज में अपनी भूमिका निभाने का अवसर भी देना होगा। उन्हें सुनना होगा, उन पर भरोसा करना होगा और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना होगा। जी हाँ, युवाओं को यह भी समझना होगा कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। अपने लिए अच्छा भविष्य बनाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा कहीं जरूरी है भविष्य में अपने परिवार, अपने गांव, अपने समुदाय और अपने देश के लिए भी कुछ कार्य करना। क्योंकि युवा शक्ति केवल उम्र की ताकत नहीं है, यह विचारों की ताकत है, सवाल पूछने की ताकत है, सीखने की ताकत है और कुछ बेहतर करने की हिम्मत है। अगर युवा साथियों आपके पास ऊर्जा है तो उसे सही दिशा दीजिए। अगर आपके पास सपना है तो उसे समाज से जोड़िए। अगर आपके पास हुनर है तो किसी और को भी सिखाइए। और अगर आपके पास कुछ बदलने का विचार है तो शुरुआत का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव की पहली आवाज अक्सर किसी युवा के मन से ही निकलती है। तो युवा दिवस पर केवल अपने सपनों की उड़ान न भरें, ऐसी उड़ान भरें जिसकी छाया हमारे परिवार, हमारे गांव और हमारे समाज तक पहुंचे। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से आज कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमने जाना कि युवा होना सिर्फ उम्र नहीं है, एक जिम्मेदारी है। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि कार्यक्रम में जो गीत संगीत और बातें रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, युवा शक्ति का हो सम्मान तभी बनेगा मजबूत हिंदुस्तान। नई सोच, नया हुनर, युवा बनाए बेहतर कल, युवा जागे समाज आगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हमारी कार्यक्रम में बातचीत भी इस विषय पर रहने वाली है कि युवा किस तरीके से हमारे देश का भविष्य है और यह दिन क्यों युवाओं को शुभकामनाएं देने का दिन है। श्रोता साथियों, इस दिन केवल हमें युवाओं को शुभकामनाएं नहीं देनी है बल्कि यह सोचने का अवसर भी देना है कि हमारे समाज, गांव और देश के निर्माण में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनके पास ऊर्जा है, नए विचार है, कुछ अलग करने का साहस है और अपने सपनों की हकीकत में, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता भी है। लेकिन मनीषा, युवाओं की शक्ति तभी समाज के काम आती है जब उन्हें सही दिशा, अवसर, शिक्षा, कौशल और अपने निर्णय लेने की आजादी मिले। आज हम बात करेंगे युवा कौन है, उनकी ताकत क्या है, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और वे अपने गांव, परिवार और समाज के विकास में क्या भूमिका निभा सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विशेष हेतु रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत है। जिस देश के युवा शिक्षित, जागरूक, मेहनती, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी होते हैं वह देश विकास की राहों पर तेजी से आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं को नई सोच, नई ऊर्जा और कुछ नया करने का साहस होता है। वे पुराने तरीकों को समझते हुए अंजलि जी नई तकनीकी, नए विचार को अपनाते हुए अपनी क्षमता को दिखा सकते हैं। इसलिए श्रोता साथी, युवाओं को केवल देश का भविष्य कहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वे आज के समाज, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: युवाओं की इसी भूमिका, उनकी समस्याओं को समझने, उनकी जो संभावना है और उनके अधिकारों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए श्रोता साथियों, हर वर्ष 12 अगस्त यानी कि श्रोता साथियों आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं की आवाज को महत्व देने, उनके सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा करने और साथ ही श्रोता साथियों उनके विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने का भी अवसर देता है।
1: बिल्कुल मनीषा, अक्सर हम युवा शब्द को केवल उम्र से जोड़कर देखते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन श्रोता साथियों, युवा होना सिर्फ कम उम्र का होना नहीं है। युवा होना एक नई सोच, सीखने की इच्छा, बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता और कुछ बेहतर करने के जुनून का नाम है। हमारे गाँव में भी ऐसे अनेक युवा है जो खेती में नई तकनीक अपना रहे हैं, पशुपालन को बेहतर बना रहे हैं, छोटे व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल माध्यमों से नई चीजें सीख रहे हैं और सामाजिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। एक युवा अगर ठान ले कि वह अपने गांव में बदलाव लाएगा तो वह अकेले भी कई लोगों को प्रेरित कर सकता है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, हर युवा के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई सरकारी नौकरी चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई शिक्षक और इंजीनियर बनना चाहता है, कोई किसान बनकर आधुनिक खेती करना चाहता है, तो कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। लेकिन श्रोता साथियों, सपना देखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उनके लिए लक्ष्य बनाना और लगातार मेहनत करते रहना।
0: जी हाँ।
1: युवाओं को चाहिए कि वे अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर किसी युवा का सपना सरकारी नौकरी पाने का है तो वह पहले ये तय करे कि उसे कौन सी परीक्षा देनी है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, रोज कितने घंटे पढ़ाई करनी है, अपनी तैयारी की जांच कैसे करनी है। श्रोता साथियों, सपना दिशा देता है लेकिन मेहनत उस दिशा को आगे बढ़ाती है।
0: जी हाँ।
1: आज हम देखते हैं मनीषा के समय में, इस समय में जो हम देखते हैं कि केवल डिग्री होना ही पर्याप्त माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। युवाओं के लिए कौशल विकास भी बहुत जरूरी है। कंप्यूटर चलाना, डिजिटल भुगतान करना, मोबाइल का सही उपयोग करना, ऑनलाइन जानकारी खोजना, कृषि तकनीक समझना, पशुपालन, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे अनेक कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दे सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: गाँव का युवा यदि अपने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक कौशल से जोड़कर देखे तो वह अपनी आजीविका को मजबूत कर सकता है। हमारे क्षेत्र में खेती और पशुपालन से जुड़े युवाओं के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। युवा केवल नौकरी तराशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला भी बन सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक दिन मनाया जाने वाला अवसर नहीं है। इसका उद्देश्य श्रोता साथियों यह समझना ही कि युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य, समान अवसर और अपनी बात रखने का अधिकार मिले। साथ ही युवाओं को भी यह समझना चाहिए कि अधिकारों के साथ उनकी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को एक समर्पित एक वैश्विक दिवस है साथियों। यह दिन दुनिया भर में युवाओं की स्थिति, उनके अधिकारों, उनके सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि युवा अवस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचता है। इस उम्र में शिक्षा पूरी करने, करियर चुनने, रोजगार पाने, अपनी पहचान बनाने और समाज में योगदान देने की कोशिश शुरू होती है अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों आज आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं को सही दिशा और उचित अवसर

0: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि हम कार्यक्रम में जान रहे हैं कि युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और किस तरीके से युवाओं के अंदर नई सोच, नई ऊर्जा होती है जो हमारे देश को आगे तक ले जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से युवा जो है वो अपने सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजें देख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यही श्रोता साथियों, बात आती है कि आज के समय में केवल डिग्री होना ही पर्याप्त नहीं है, युवाओं के लिए कौशल विकास भी बहुत जरूरी है। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना, हमारे गाँव के विकास में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है मनीषा, क्योंकि युवा ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं, गांव की समस्याओं को समझ सकते हैं, पानी बचाने के अभियान में लोगों को जोड़ सकते हैं, स्वच्छता के लिए जागरूकता फैला सकते हैं, पेड़ लगाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर गांव का कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो युवा उसके माता पिता से बात कर सकते हैं। अगर किसी परिवार को किसी सरकारी योजना की जानकारी नहीं है तो युवा उन्हें सही जानकारी तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। युवा अपने गाँव में मैं अकेला क्या कर सकता हूँ कि सोच को छोड़कर मैं शुरुआत तो कर सकता हूँ कि सोच अपना सकते हैं। आज हम देखते हैं मनीषा के मोबाइलों के मोबाइल जो है वो युवाओं के हाथ में एक शक्तिशाली साधन है। मोबाइल से हम पढ़ सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, रोजगार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मोबाइल के माध्यम से पता चल जाती है। लेकिन यही मोबाइल अगर बिना उद्देश्य के घंटों इस्तेमाल किया जाए तो समय की बर्बादी भी बन सकता है। युवाओं को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ या मोबाइल मुझे चला रहा है। सोशल मीडिया पर हर जानकारी सही नहीं होती, इसलिए किसी भी खबर को आगे भेजने से पहले सच्चाई जांचना जरूरी है। मोबाइल मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन उसे ज्ञान और अवसर का माध्यम बनाना युवाओं के हाथ में है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यदि किसी युवाओं को शिक्षा और अवसर मिलते हैं तो वो अपनी प्रतिभाओं को पहचान सकता है।
0: बिल्कुल।
1: वहीं यदि उसके अवसरों में कमी होती है, बेरोजगारी, भेदभाव या गलत जानकारी का सामना उसे करना पड़े तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।
0: बिल्कुल।
1: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किसी की बात को इसी बात को याद दिलाता है साथियों कि युवाओं को केवल सलाह देने की नहीं बल्कि उन्हें अवसर देने की भी आवश्यकता है। साथ ही हम देखते हैं कि किसी भी देश की प्रगति युवाओं की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होती है।
0: जी जी।
1: युवा वर्ग में ऊर्जा और सीखने की क्षमता अधिक होती है, वे नई तकनीकी जल्दी समझते हैं और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, कृषि, व्यापार, खेल, कला, प्रशासन और सामाजिक सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गाँव में युवा खेती के नए तरीकों को अपना रहे हैं, कुछ युवा छोटे छोटे व्यवसाय अंजलि जी वो शुरू करते हैं, कई युवा डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को बड़े बाजार तक पहुंचाते हैं। यदि सही दिशाओं और आगे बढ़ने के अवसर उन्हें मिलते हैं तो हर युवा आगे बढ़ने का प्रयास करता है और अपना बेहतर देने का प्रयास करता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि युवा जीवन में कई बार असफलता का सामना करते हैं, परीक्षा में सफलता नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, व्यवसाय में नुकसान हो जाता है या किसी प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कमजोर है। असफलता हमें बताती है कि हमारी तैयारी में कहां कमी रह गई है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा प्रयास करना चाहिए। एक परीक्षा में असफल होना जीवन में असफल होना नहीं है। जरूरी है कि युवा अपनी तुलना हर समय दूसरे लोगों से न करे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को सफल लगता है। युवा केवल अपने भविष्य के बारे में सोचे यह पर्याप्त नहीं है, उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान करना, बच्चों की शिक्षा में मदद करना, महिलाओं का सम्मान करना, नशे से दूर रहना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना, पानी और प्रकृति की रक्षा करना, ये सभी युवाओं की सामाजिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
0: युवा अपने व्यवहार से समाज में उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर एक युवा कहता है कि वह नशा नहीं करेगा तो उसके साथ जुड़े कई दूसरे युवा भी प्रेरित हो सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: अगर एक युवा पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करता है तो पूरे गांव के लिए संदेश बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यदि युवा श्रोता साथियों सही दिशा में आगे बढ़े तो वे न केवल अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने परिवार, गांव, शहर और देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को सही दिशा देना भी अंजलि जी बहुत जरूरी है। ऊर्जा यदि श्रोता साथियों सकारात्मक काम में लगाई जाए तो वह समाज को आगे बढ़ाने में काम आ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: वहीं बिना दिशा के ऊर्जा कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि गलत रास्तों पर जा सकती है। इसीलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार सभी की जिम्मेदारी है कि युवाओं को सकारात्मक अवसर मिले, खेल शिक्षा, कौशल विकास, कला और अन्य जो गतिविधियां हैं उन्हें सीखने का अवसर दें उनमें।
0: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि आज युवाओं के सामने नशा एक बड़ी चुनौती है। नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा, रोजगार और भविष्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए युवा साथियों को चाहिए कि वे नशे को अपनी पहचान न बनने दें। अगर कोई मित्र नशे की ओर बढ़ रहा है तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उससे बात करें और जरूरत पड़ने पर परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें। युवा शक्ति नशे में नहीं, अपने हुनर और मेहनत में है। युवा शक्ति की बात महिलाओं और बेटियों के बिना पूरी नहीं हो सकती है। हमारे समाज की युवा बेटियां, बेटियों में भी प्रतिभा है, सपने और नेतृत्व की क्षमता है। उन्हें शिक्षा, कौशल, सुरक्षित वातावरण और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। बेटी चाहे खेती में नई तकनीक अपनाए, अपना व्यवसाय शुरू करे, खेल में आगे बढ़े, नौकरी करे या ग्राम सभा में अपनी बात रखे, हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी समय को मजबूत बनाती है। जब युवा बेटा और युवा बेटी समान अवसर पाते हैं तब परिवार और समाज दोनों आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि युवाओं को केवल यह नहीं बताया जाना चाहिए कि क्या कहना है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने और अपनी क्षमताओं को दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा युवा जीवन की सबसे मजबूत नींव है। अच्छी शिक्षा केवल नौकरी पाने में मदद नहीं करती है साथियों, बल्कि व्यक्ति को सही दिशा और सही और गलत में अंतर समझने, समस्याओं का समाधान करने और अपनी जिम्मेदारी को समझने की क्षमता देती है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में श्रोता साथियों शिक्षा का स्वरूप है वो बदल रहा है। किताबों के साथ डिजिटल माध्यमों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और व्यवहारिक प्रशिक्षण का महत्व है वो भी अंजलि जी बड़ा है। युवाओं को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल भी विकसित हो। हम देखते हैं कि गांव और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो नहीं पहुंच पाती है। शिक्षा डिजिटल संसाधनों की आवश्यकता होती है साथियों। साथ ही हम देखते हैं कि शिक्षा के अवसर केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम जान पा रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं को अपने जीवन में अलग तरह की चीजें सोचने की जरूरत है। अगर एक युवा प्रेरित होकर बहुत सारी अलग चीजें करता है तो अन्य युवा उस व्यक्ति को देखकर प्रेरित होकर अन्य चीजें कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर। श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमें यह याद दिलाता है कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है।
1: बिल्कुल,
0: उनके पास ऊर्जा है, नई सोच है, सीखने की क्षमता है, बदलाव लाने का साहस है। यदि श्रोता साथियों इसी ऊर्जा को सही दिशा, उचित अवसर और आवश्यक संसाधन मिल जाए, अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि युवा समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, समान अवसर और अपनी बात रखने का मंच मिलना चाहिए। साथ ही युवाओं को भी यह समझना होगा श्रोता साथियों कि उन्हें मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को अपनाते हुए अपने जीवन को सही ढंग से जीना है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है और अपनी जो भागीदारी बनती है वो हमें देनी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही युवा साथियों को कहना चाहेंगे कि आज जल संकट, प्रदूषण, पेड़ों की कमी और बदलते मौसम जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। युवा जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पौधारोपण, प्लास्टिक कम करने और स्वच्छता जैसे अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हमारे गांव का कोई युवा अगर अपने घर से पानी बचाने की शुरुआत करता है तो धीरे धीरे पूरा परिवार और फिर पूरा मोहल्ला उससे सीख सकता है।
0: जी
1: आज
0: हाँ।
1: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हर युवा कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा, मैं नशे से दूर रहूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य और मानसिक सुख का ध्यान रखूंगा, मैं हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करूंगा, इसी के साथ मैं सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने गांव और समाज की किसी एक समस्या के समाधान में योगदान दूंगा, मैं असफलता से घबराने की बजाय उससे सीखूंगा, मैं महिलाओं और बेटियों का सम्मान करूंगा, मैं प्रकृति और पानी की रक्षा करूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करूंगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमें युवाओं को लेकर यह नहीं कहना है कि यह कहकर हम उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करना चाहिए श्रोता साथियों कि वे देश के भविष्य हैं। वास्तव में श्रोता साथी, युवा आज भी महत्वपूर्ण हिस्सा है और कल के निर्माण की शक्ति भी हैं। उन्हें आज अवसर और विकास दिया जाएगा तभी वे आने वाले कल को बेहतर बना पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य भी श्रोता साथियों यही है कि दुनिया युवाओं की आवाज को सुने, उनकी समस्याओं को समझे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर दे। साथ ही श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि युवा जब अपने सपनों को मेहनत से जोड़ते हैं, ज्ञान को कौशल से जोड़ते हैं और अपनी सफलताओं को समाज की भलाई से जोड़ते हैं, तब अंजलि जी हम देखते हैं कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता है।
1: जी जी।
0: बल्कि वह समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए श्रोता साथियों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमें सफलता यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम युवाओं की प्रतिभाओं को पहचानेंगे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर देंगे और उनके विचारों का सम्मान करेंगे। साथ ही युवा स्वयं भी यह संकल्प ले कि वे अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का सही उपयोग और सकारात्मक कार्यों में लेकर आएंगे।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही याद दिलाना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं है बल्कि वे आज के समाज की वर्तमान शक्ति भी है।
0: जी हाँ।
1: देश का विकास केवल बड़ी बड़ी इमारतों और सड़कों से नहीं होता, विकास तब होता है जब गांव का युवा शिक्षित होता है, हुनर सीखता है, रोजगार पाता है और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझता है, अपने समाज की समस्याओं के समाधान में भागीदारी करता है। हमारे गांव का हर युवा अपने अंदर एक संभावनाएं लेकर चलता है, जरूरत है उस संभावनाओं को पहचानने की। हो सकता है कि किसी युवा के पास बड़ा साधन न हो लेकिन उसके पास समय, मेहनत, विचार और हौसला जरूर हो सकता है। कई बार बदलाव के लिए इतना ही काफी होता है। श्रोता साथियों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमें याद दिलाता है कि युवाओं को केवल भविष्य की उम्मीद के रूप में देखने के बजाय उन्हें वर्तमान के निर्णयों और विकास में सहभागी बनाना जरूरी है। युवा जब अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं तो वे अपने जीवन के साथ साथ पूरे समुदाय की तस्वीर बदल सकते हैं। एक जागरूक युवा अपने परिवार को नई दिशा दे सकता है, एक कुशल युवा अपने लिए रोजगार का रास्ता बना सकता है, एक जिम्मेदार युवा अपने गांव में बदलाव ला सकता है और लाखों जागरूक युवा मिलकर देश के विकास में नई गति दे सकते हैं। इसलिए आज का दिन केवल उत्सव का दिन नहीं है बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा देने का दिन है। आज हम युवाओं को केवल यह न कहें कि देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, बल्कि उन्हें अवसर दें, उनकी बात सुने, उनके विचारों का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूत मंच दे। क्योंकि जिस समाज का युवा जागरूक, शिक्षित, कुशल, स्वस्थ और जिम्मेदार होता है, उस समाज का भविष्य मजबूत होता है। सपने देखिए, लक्ष्य बनाइए, सीखते रहिए, गिर कर उठिए और आगे बढ़िए, क्योंकि युवा शक्ति का जब सम्मान होता है तभी मजबूत हिंदुस्तान बनता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि युवाओं को अपने जीवन में कुछ सरल और महत्वपूर्ण बातें अपनानी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि श्रोता साथियों, उन्हें अपने लक्ष्यों को समझना चाहिए, लेकिन श्रोता साथियों, लक्ष्य पाने के लिए हमें गलत रास्ता नहीं चुनना है। पढ़ाई और कौशल के साथ स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही श्रोता साथियों, समय का सही उपयोग करना चाहिए और अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने विकास पर हमें ध्यान देना है।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं को असफलता से घबराने के बजाय श्रोता साथियों, यह सीखना चाहिए कि असफलता हमारे सीखने और आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। महत्वपूर्ण यह है श्रोता साथियों कि हम उनसे क्या सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आने वाले समय में युवाओं के सामने कई चुनौतियां होंगी, जैसे कि तकनीकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ रोजगार का स्वरूप है वो भी बदल रहा है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं वो बढ़ रही है, जानकारी बहुत तेजी से उपलब्ध हो रही है, लेकिन श्रोता साथियों, सही और गलत जानकारी के बीच अंतर समझना भी हमारे लिए एक चुनौती है।
1: जी जी,
0: ऐसे समय में युवाओं को लगातार सीखने की आदत विकसित करनी होगी। केवल एक बार श्रोता साथियों शिक्षा प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होता है।
1: बिल्कुल,
0: बदलती दुनिया के साथ अपने ज्ञान और कौशल को भी बदलना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ मनीषा, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमें यह समझने का अवसर देता है कि युवाओं की भूमिका केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सफल बनाने तक सीमित नहीं है। युवा अपने परिवार, गांव, समुदाय और देश की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उनके पास बदलाव को देखने का नया नजरिया होता है और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी होती है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देना पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में युवा कई तरह की परिस्थितियों के बीच अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के सामने रोजगार की चुनौती है, किसी के सामने आर्थिक कठिनाई, किसी को शिक्षा के बेहतर अवसर तलाशने हैं, तो कोई अपने हुनर को पहचान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे समय में जरूरी है कि युवा निराश होकर अपने प्रयास छोड़ने की बजाय उपलब्ध अवसरों को पहचाने, लगातार सीखते रहें। हर रास्ता एक जैसा नहीं होता है और सफलता का अर्थ भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए खुद पर विश्वास करके आत्मविश्वास को बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी। कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और यह दिवस है वो हमारे युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही हमने जाना कि युवाओं की ऊर्जा है वो कैसे सही दिशा में आगे बढ़ सकती है, और युवाओं की शिक्षा को लेकर भी हमने ढेर सारी बातें की। कुछ छोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें रह गई है, वो कार्यक्रम में आगे हमारे श्रोता साथियों से हमारी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान ही चुके हैं, यही आपको कहना चाहेंगे कि युवाओं को बहुत सारी छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं उन्हें पहचान कर बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। गांव में पानी की बचत, स्वच्छता, शिक्षा, पौधों की देखभाल, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, बुजुर्गों की सहायता करना, लोगों को सरकारी सेवाओं की जानकारी देना, ये ऐसे काम हैं जिनके लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत होती है पहल करने की। इसके साथ ही युवाओं को यह भी समझना होगा कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है, लेकिन समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना भी उतना ही जरूरी है। एक जिम्मेदार युवा कानून का सम्मान करता है, दूसरों की गरिमा का ध्यान रखता है, भेदभाव का विरोध करता है और अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास भी करता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि खेल युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अनुशासन, टीम की भावना, आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। खेलों से युवाओं में हार जीत दोनों को सीखने को मिलता है। साथ ही हम देखते हैं कि हर युवा खिलाड़ी बनना जरूरी नहीं है साथियों, लेकिन जीवन में किसी न किसी शारीरिक गतिविधि में शामिल होना हमारे लिए जरूरी है। खेल युवाओं को सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल सुविधा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि जो गांव के युवा साथी हैं उनकी प्रतिभाएं हमारे सामने आए। हम देखते हैं कि युवाओं के पास कल्पना और रचनात्मक सोच की शक्ति होती है। लेखक, संगीत, चित्रकला, अभिनय, विज्ञान, तकनीकी, डिजाइन और अन्य क्षेत्रों में अपनी रचनाएं वे दिखा सकते हैं। कई बार समाज में बदलाव की जरूरत श्रोता साथियों नए विचारों से ही होती है, इसलिए युवाओं में नए विचारों को महत्व देना भी हमारे लिए जरूरी है। यदि किसी युवाओं का विचार अलग है तो उसे तुरंत गलत कहने के बजाय श्रोता साथियों उसके पीछे की सोच को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आज डिजिटल युग ने युवाओं के सामने अवसरों के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन इन अवसरों का लाभ तभी मिलेगा जब तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से किया जाएगा। इंटरनेट को केवल मनोरंजन का माध्यम बनाने के बजाय शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, व्यवसाय और जानकारी प्राप्त करने का साधन बनाया जा सकता है। सही जानकारी की पहचान करना और गलत सूचनाओं से सावधान रहना भी आज की युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का संदेश यह भी है कि हर युवा को अपनी क्षमता पहचानने का अवसर मिलना चाहिए। किसी युवा की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती। जब कोई युवा आगे बढ़ता है तो अपने परिवार के लिए प्रेरणा बनता है, उसके अनुभव से दूसरे युवा भी सीख सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, युवाओं को केवल सलाह देने के बजाय उनकी बात सुने, उनके विचारों को महत्व दे, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें। परिवार युवाओं पर विश्वास करे, समाज उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करे और युवा भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि मजबूत युवा केवल अपना भविष्य नहीं बनाता मनीषा, वह अपने आसपास के लोगों के लिए भी संभावनाओं के नए रास्ते खोलता है। जब गांव का युवा जागरूक होता है तो गांव मजबूत होता है, गांव मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है और जब समाज आगे बढ़ता है तो देश की प्रगति और अधिक मजबूत होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस श्रोता साथियों हमें यह समझने का अवसर देता है कि समाज भी उसी दिशा में युवाओं की सोच के और कार्यों को तय करती है। साथियों, युवा जिस तरह अपने विचारों को अपनाते हैं, जिस तरह निर्णय लेते हैं और जिस उद्देश्य के लिए मेहनत करते रहते हैं, उनका प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देता है। इसलिए युवाओं को केवल संख्या के रूप में नहीं बल्कि समाज के बदलाव में आने वाली सक्रिय शक्ति के रूप में हमें देखना चाहिए। आज आवश्यकता अंजलि जी इस बात की है कि युवाओं को अपनी रुचि पहचानने की, अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने की और साथ ही श्रोता साथियों अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की उम्मीद रखनी चाहिए। उन्हें असफल होने से डर के बजाय श्रोता साथियों प्रयास करने का अवसर दिया जाना चाहिए। परिवार उन्हें समझे, शिक्षा उन्हें दिशा दे और समाज की क्षमताओं पर विश्वास करे तो हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी है वो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। आज जागरूक युवा अपने आसपास की छोटी छोटी समस्याओं को गंभीरता से देख सकता है। वह स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक समानता, डिजिटल जागरूकता और सामुदायिक विकास जैसे कार्यों में योगदान देकर अपने क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। बदलाव हमेशा श्रोता साथियों किसी बड़े कदम से शुरू नहीं होता है। कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि एक छोटी सी सोच और छोटा सा प्रयास भी इसके लिए शुरुआत कर सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों को अंत में कहना चाहेंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम युवाओं को केवल कल की उम्मीद न माने बल्कि आज के बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा माने। हर युवा अपने भीतर मौजूद क्षमता को पहचानने, अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाए और अपने ज्ञान, मेहनत और हुनर का उपयोग समाज के हित में करें।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बदलाव हमेशा किसी बड़े व्यक्ति से शुरू नहीं होता, कई बार वो एक साधारण युवा के छोटे से संकल्प से शुरू होता है। अपने सपनों को केवल आंखों तक सीमित मत रखिए, उन्हें मेहनत का रास्ता दीजिए। अपनी आवाज को केवल शिकायत तक मत रखिए, उसे समाधान की शुरुआत बनाइए। अपनी युवा शक्ति को श्रोता साथियों केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने गाँव और अपने समाज के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी लगाइए। क्योंकि जब मनीषा युवा सोच बदलेगी तो तस्वीर बदलेगी। युवा आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: और युवा जिम्मेदारी उठाएगा तो देश का भविष्य भी मजबूत होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: जी हाँ, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए कार्यक्रम का पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। एक बार पुनः आप हमारे मोबाइल नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, इसी नंबर के ज़रिए आप अपने पसंदीदा नगमे और गीत पहुंचा सकते हैं श्रोता साथियों। मैं नंबर आपको फिर से बताना चाहूंगी, क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय सुझाव और पसंदीदा नगमे दोनों पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ढेरों फरमाइशें आई हैं, तो इसी बीच मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, पहली फरमाइश हमारे बीच आई है, आपको बताना चाहूँगी, रायबरेली से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। गीत के बोल हैं गोरी है कलाइयाँ। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं सत्येंद्र नरेश चौहान, जशवर्धन मेरारिया जी, शिवम संजीव कमलेश जी, रोहित वजेंद्र खान जी, अरुण गणेशलाल, जसवंत संजय जी। इसी बीच बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं चंद्रन सिंह, श्याम प्रसाद सिंह और जसवंत राहुल अरविंद जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी है कलाइयाँ। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और बने रहिएगा दोस्तों वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों, फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अगर अभी तक आपने अपनी फरमाइश नहीं भेजी है तो ज़रूर पहुंचा दीजिए। श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है भिलाई छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, गीत के बोल हैं और फिल्म का नाम है जीत। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी है सुनो निगम जी और अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे दीपक खट्टक, सुनालाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी खट्टक, सुरेंद्र डोमेंद्र, सोनाली डोमेंद्र, डॉली मिन्हास, प्रभा मिन्हास जी। गांटोल से जुड़ना चाह रहे अरुण, वजेंद्र, रोहित, कमलेश, संजीव डाबीराव जी, सत्यम मीणा, जशवंदरदन जी, सत्येंद्र कुमार जी, चरण सिंह और श्याम प्रसाद जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। पुष्पा कुंवर, हेमंत टेलर, भावाराम जी, रामेश लाल, प्यारेलाल जी, मोहन जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: है यूरो ग्रिप विद ट्रेड स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जिसका ट्रेड सालों साल चलने के बाद भी दे पहले दिन जैसा ग्रिप। यूरो ग्रिप लगाया तो टायर चेंज के लिए बहुत टाइम।
1: Mixing in the house.

0: दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमारे बीच फरमाइश आई है महाराष्ट्र बीड शहर से। फिल्म का नाम है साथियों रिफ्यूज। गीत के बोल है पंछी नदियां पवन के झोंके। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, रामनिवास अग्रवाल, दहनेंद्र टोहल, बीपी कुलते, पिरजू परदेसी जी और भी हमारे साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जुड़ रहे हैं कालिका माता पाड़ीगला से पुष्पा कुमार, हेमंत टेलर, रमेश लाल, परेलाल, श्यामलाल, घनश्याम जी, राधेलाम शर्मा, लालाराम शर्मा, अरविंद, राहुल शर्मा जी, जसवंत गमंडीलाल, मेघराज मीणा, कपिल शर्मा जी, ये रायबरेली से जुड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो घाटोल से जुड़ रहे, सतराम हरियालाल, हेमंत नामदेव, आकाश नामदेव, देवेश, विपिन शर्मा, हरेंद्र, विकास शर्मा, दलपत श्यामलाल जी, रामलाल पंकज, राहुल शर्मा, मेहराज मीणा जी, ये यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पंछी नदियां पवन के झोंके। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, पंछी नदियां पवन के झोंके, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है रायगढ़ बिहार से। फिल्म का नाम है जान तेरे नाम, गीत के बोल हैं हम लाख छुपाए प्यार मगर। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी है साथियों कुमार सानू आशा भोसले जी ने। फरमाइश करता है इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं तलवाड़ा से अनूप चौहान, मेघराज मीणा, सुंदरलाल अवधेश, रामेश्वरम गणेशलाल जी। इसी बीच दानपुर से जुड़ना चाह रहे मिथिलेश वीरेश चौहान, विकास हंसराज जी, संदीप चौहान। रायगढ़ बिहार से उमराज शफी उमा, दीपक उमा, कमल कलीम उमा, अरविंद उमा जी। खंडवा से दुर्गा कुमारी, राकेश ताई, सपना ताई। डुमराव से लालू बाबा दीवाना, दिव्या भारती जी, महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। दोस्त जुड़ रहे हैं बांसवाड़ा से ही पन्नालाल, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश प्रसाद जी, मनोहर हनुमंत, ओमकार रावत जी, सीताराम, राधेलाल, दिनेश चंद्र जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत को। गीत के बोल हैं हम लाख छुपाएं प्यार मगर। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत गंजुड़वारा उत्तर प्रदेश से आया है। फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान। गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। गंजुड़वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इराना, नाजिश शेख, दामन दामिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी, रायबरेली से हैं मेघराज मीणा, अनूप चौहान, दीपक कुमार, सुंदरलाल, यवतेश, रामेश्वरम, गणेश लाल जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं निकिता शर्मा, अरविंद, राजेश शर्मा, राजकुमार, नरेश चौहान चित्तौड़गढ़ से जुड़ रहे हैं, मुकेश शर्मा, महेंद्र इमरत पंजाब से हैं, वीरेंद्र शैलेंद्र सत्यम प्राणी जी जो हैं वो प्रतापपुर से जुड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे बांसवाड़ा से भी जुड़ना चाह रहे हैं दोस्त देवेंद्र प्रजापत, अभिनव दयाल शर्मा जी और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। पन्नालाल जी, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान जी, रमेश प्रसाद जी, पंटी प्रजापत घाटोल से जुड़ रहे हैं, सोरपुर से राधेलाल, दिनेश चंद्र और विशाल संतीश पांडे जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। बताना चाहूँगी बक्सर शहर से, फिल्म का नाम है तुम मिले, गीत के बोल हैं दिल इबादत कर रहा है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, बक्सर से शहर से जुड़ रहे फातिमा राज, बेबी अंसारी और डब्ल्यू अंसारी जी। श्रोता साथी जुड़े रायगढ़ बिहार से उमा राज, दीपक कुमार, रमेश उमा, अरविंद उमा, कमल उमा। खंडवा से दुर्गा कुमार जी, सपना और राकेश ताई। डुमराव से लालू बो, दिव्याना, दिव्या भारती। चंद्रशहर सहारनपुर से महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिन यादव, नरेंद्र यादव। गंजुटवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लो परवेज बेगम, इमराना नाथ, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, एड नाशिश शेख, नाजा नाशिश, शाहिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं मेरठ से, अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर, जेवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं दिल इबादत कर रहा है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414 08

तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही मेरा यार। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है राम लखन, गीत के बोल ही तेरा नाम लिया तुझे याद किया। इस गीत के अनुरोध करता है कमल सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इसे भी जुड़ना चाह रही हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। कोहका बलाई से जुड़ना चाह रही हैं दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रही हैं सुरेश डोमिन, शालिनी जी डोमिन। लाहौरा से जुड़ना चाह रही हैं डोली निहा और प्रभा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे रायगढ़ बिहार से उमा राज, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा, कमल जी उमा। जेल रोड खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कुमारी, सपना, राकेश ताई जी। डुमराव से जुड़ रहे हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तेरा नाम लिया तुझे याद किया। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। इस गीत की अनुरोध करता है रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। बख्शर सर से जुड़ना चाह रहे फातमा नाज, बेबी अंसारी, डब्ल्यू जी अंसारी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसत सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू इसी बीच जुड़ रही हैं। महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। रघुवीर नगर दिल्ली से जुड़ रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं चल छैया छैया।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यतला महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है कसूर, गीत के बोल ही कितने बेचैन हो के। इस गीत की फरमाइश करता है शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, सुप्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। अम्बाला हरियाणा से जुड़ रहे हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका नमद, गुरशब्द, गुरकीरत सिंह राहुल, मन्नत और विजेंद्र जे जान। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं राज खोरवाल, रानी खोरवाल, प्रकाश जी खोरवाल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी, उस्मानाज अंसारी, शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, फातमा नाज। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सतीश जनेजा, बिमला अनेजा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही कितनी बेचैन हो के। फिल्म का नाम है कसूर, गीत के इस गीत को आवाज़ दी है अलका जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है रंग, गीत के बोल हैं तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और विश्वता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चना ताई गुड़ानी, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे, प्रतिभाजी गुड़ानी, महेश राम टेकी। भागपत से जुड़ना चाह रहे जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। अम्बाला हरियाणा से जुड़ रहे हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, नमन गुरशब्द और गिरकिर सिंह राहुल और विजेंद्र जी जानची। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है रंग, गीत के बोल ही तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बद्रावती से। फिल्म का नाम है तुम मिले, गीत की बोल है तू ही हकीकत ख्वाब तू। इस गीत की फरमाइश करता है अब्दुल्लोही वाला शाहिदा शेख शाहिल शेख अब्दुल्ला जी शेख। और भी श्रोता साथी जुन्ना चारी संगमुगी सी बाबा साहेब कणकर साकरबाई कणकर परमेश्वर रोहिणी श्रावणी ईश्वरी और कणकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है सलार पलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन केसरुद्दीन जी। इसी बीच चुनना चाह रही मराठवाड़ा से संयुक्त मश्रम साइना हसन अगजनासिया आफिया इब्राहिम और रामभाव तनवी जी। जौनपुर से जुड़ रहे इरशाद अहमद अंसारी कामरान इरशाद अरमान इरशाद नवेदी इरशाद हजरत अबू समझी। बनारस से जुड़ रहे मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी नूरिन अंसारी आफिया परवीन जी। सहारनपुर से जुड़ना चाह रही जोन टिकिस्टो रोज टिकिस्टो पल टिकिस्टो विलेज टिकिस्टो। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है तुम मिले, गीत की बोल ही तू हकीकत ख्वाब तू। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भीड़ शहर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल। गीत के बोल ही कभी तो छलिया लगता है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है नंदकिशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, रामनिवास अग्रवाल, धनजी पिट्टू, पीबी कुदलीश जी और बिरजू परदेसी। भीड़ शहर से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जयश्री मेलेत्री, कविता जी, पुष्पा अग्रवाल, कमल कुतली, मंजूश्री परदेसी, मीरा भीसी जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। सनावत सी, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद इशाक और बब्बू डब्बू जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं चनुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजयोगिता, रंजन शाहू, हेमंत दामदेव, धर्मदास वाधवानी जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे। भागवत सी, आसिफ अली खान, ममिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही कभी तो छलिया लगता है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर। और श्रोता साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वाग रेडियो 90.8 एफएम, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाई बोनो, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जया पेड़ ने छांव में आपने रह हो या आपने ने कितनी शांति मिले है, जय हवा में आपने हाल रह हो ई भी आपना थकी कई आश राखे है। हो भाई अगर पेड़ ने रहेगा तो आपने हरते जीवंगा, प्रकृति आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दूंगा, पानी में बचा दूंगा, मैं अपनी धरती में जीवन दान लूंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये अबावरा काल में बदलाव की शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: बाप दादा ने जमा होते मारो अधिकार क्यों नहीं सोरी जन्म तक की हकदार है कानून ने आ बात मानी है और कन्या पुटे धर्म हक को ले सके न रिवाज और सच में बदली सके। बाप दादा ने जमे सोरी ने अधिकार सोरी ने हक इन्हें पहचान।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस युवा के पास सपने हैं, वही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं।
1: जी हाँ कशिश, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
0: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि जागृति जी, हम कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से जब भी बातचीत करते हैं तो एक नया विषय हमारे बीच रहता है।
1: बिल्कुल,
0: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज युवा दिवस है, तो इसी उपलक्ष्य में श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे युवा शक्ति, परिवर्तन, नवाचार और नेतृत्व शक्ति को लेकर।
1: बिल्कुल कशिश, ये विषय केवल युवाओं की क्षमता की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि अगर युवा सही दिशा, सही सोच और सकारात्मक उद्देश्य के साथ आगे बढ़े तो वे समाज, देश और दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज हम इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि युवा परिवर्तन के वाहक कैसे बन सकते हैं, नवाचार क्यों जरूरी है, नेतृत्व का वास्तविक अर्थ क्या है और एक जिम्मेदार युवा के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इन सभी बातों को लेकर आज हम कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना युवा साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं हम पहले।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं युवा शक्ति, परिवर्तन, नवाचार और नेतृत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कशिश, भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की बड़ी आबादी युवा है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक अवसर है। अगर युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए तो भारत विकास, विज्ञान, शिक्षा, कृषि, तकनीक, पर्यावरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन केवल युवा होना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि युवाओं में सही सोच हो, जिम्मेदारी हो, अनुशासन हो, सीखने की इच्छा हो, समाज के प्रति संवेदनशीलता हो। यही गुण उन्हें परिवर्तनकर्ता, नवाचारी और प्रभावी नेता बनाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि युवा शक्ति के वास्तविक अर्थ को समझना भी हमारे लिए जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि युवा शक्ति का मतलब होता है केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि इसका मतलब है नई सोच रखने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों में समाधान ढूंढने की क्षमता, बदलाव को स्वीकार करना, समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक रहना साथियों, दूसरों को प्रेरित करना और जिम्मेदारी निभाना जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जब युवा अपने ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं तो वास्तविक युवा शक्ति दिखाई देती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम अक्सर ये सोचते हैं कि समाज बदले, व्यवस्था बदले, लोग बदले, लेकिन हर बड़ा परिवर्तन किसी एक व्यक्ति की सोच से शुरू होता है।
1: जी हाँ,
0: अगर एक युवा समय का सम्मान करेगा, ईमानदारी को अपनाएगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, शिक्षा को महत्व देगा, नशे से दूर रहेगा, सामाजिक जिम्मेदारियों को अपनाएगा, तो वो अपने आसपास सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बदलाव का अर्थ हमेशा बड़ा आंदोलन नहीं होता है दोस्तों। कई बार छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े परिवर्तन की नींव बनती है कशिश।
1: जी हाँ जागृति जी, साथ ही हम कह सकते हैं कि नवाचार का होना भी जरूरी है, क्योंकि आज का युग नवाचार यानी कि इनोवेशन का युग है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, नवाचार का मतलब केवल नई मशीन बनाना नहीं है, किसी समस्या का नया सरल और उपयोगी समाधान भी नवाचार ही है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि किसानों के लिए खेती की तकनीकें, पानी बचाने के नए तरीके, डिजिटल शिक्षा, स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और ग्रामीण महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर।
0: बिल्कुल
1: साथियों, युवा अपनी कल्पना शक्ति और तकनीकी समझ के कारण समाज की अनेक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि नवाचार केवल शहरों में होता है, जबकि ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है श्रोताओं। आज ग्रामीण युवा अपनी आधुनिक खेती अपना रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग भी कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग भी शुरू कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह के साथ काम भी कर रहे हैं और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचा रहे हैं। गांव का युवा अगर अपने संसाधनों को समझकर काम करे तो वो अपने क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से लोग नेतृत्व का अर्थ केवल पद या अधिकार समझते हैं कशिश, लेकिन वास्तविक नेतृत्व तो वो है जो दूसरों की बात को सुने, सबको साथ लेकर चले, कठिन समय में समाधान निकाले, स्वयं उदाहरण बने, समाज के हित को प्राथमिकता दे।
1: जी हाँ,
0: एक अच्छा नेता आदेश नहीं देता बल्कि प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी बहुत अच्छी चल रही है परिवर्तन, नवाचार और नेतृत्व को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
0: जी हाँ,
1: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें हमारी आपसे बहुत अच्छी चल रही है साथियों, नवाचार और परिवर्तन युवा शक्ति को लेकर, यही जैसा कि गीत से पहले हम जान पाए थे कि परिवर्तन की शुरुआत होती कैसे है और नवाचार क्यों जरूरी है, ये भी हमने जाना था जागृति जी। यही अगर बात करें कि युवाओं में नेतृत्व कैसे विकसित हो सकता है, तो कहा जाता है कि नेतृत्व एक दिन में नहीं आता। इसके लिए आत्मविश्वास, संवाद कौशल, टीम भावना, निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत के साथ साथ सकारात्मक सोच का होना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, विद्यालय, कॉलेज, स्वयंसेवी संगठन, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सामुदायिक कार्यक्रम नेतृत्व विकसित करने के एक अच्छे माध्यम हो सकते हैं युवाओं के लिए।
1: बिल्कुल कशिश, जैसा कि आपने अभी बताया कि युवाओं में नेतृत्व के गुण कैसे विकसित कर सकते हैं, यही अगर शिक्षा और कौशल की भूमिका को लेकर हम बात करें, तो आज के समय में केवल डिग्रियां प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। युवाओं को अपने ज्ञान के साथ साथ कौशल भी विकसित करने होंगे। हम देखते हैं कि संवाद कौशल, डिजिटल समझ, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, टीम में काम करने की क्षमता और समय प्रबंधन, ये सारे कौशल युवाओं को और अधिक सक्षम बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो युवा को प्रश्न पूछना है, विचार करना है और समस्याओं के समाधान खोजना सिखाए।
0: बिल्कुल,
1: एक शिक्षित और कुशल युवा अपने अवसर खोज सकता है कशिश, और दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: आज हम देखते हैं कि तकनीक युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आज शिक्षा, जानकारी और नए कौशल सीखने के अनेक अवसर हमें उपलब्ध करवा रही है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन तकनीक का उपयोग सोच समझकर करना बहुत जरूरी है। केवल मनोरंजन या समय बिताने के लिए तकनीक का उपयोग हम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए गलत है।
0: बिल्कुल,
1: तकनीक का उपयोग तो हमें कुछ नया सीखने के लिए, रचनात्मक कार्य करने के लिए, स्थानीय जानकारी साझा करने के लिए और समाज के लिए उपयोगी पहल करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: डिजिटल दुनिया में जानकारी बहुत तेजी से फैलती कशिश, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए युवा के लिए ये भी जरूरी है कि वो किसी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता जांचने की आदत विकसित करें।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों, परिवर्तन केवल बड़े शहरों या बड़ी संस्थाओं से नहीं आता।
1: बिल्कुल,
0: बल्कि छोटे गांव, स्कूलों, परिवारों और समुदायों से भी शुरू हो सकता है। जब युवा हमारे स्थानीय समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए आगे आते हैं जागृति जी, तभी विकास वास्तव में जन भागीदारी वाला बनता है।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता केवल डिग्री हासिल करने की नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन कौशल विकसित करने की भी है। ऐसे में संवाद, सहयोग, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच और नैतिक मूल्यों का संतुलन ही एक युवा को प्रभावशाली बनाता है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, हम सभी को ये समझना होगा कि नेतृत्व का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने का अवसर देना भी है।
1: जी हाँ,
0: यदि हर युवा अपने क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल करने का संकल्प ले ले, जैसे किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, जल संरक्षण का अभियान चलाना, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना या डिजिटल साक्षरता फैलाना, तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: यही जागरूकता एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की पहचान बन सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा शक्ति के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम देखते हैं कि आज हमारे युवा साथी प्रतियोगिता, करियर को लेकर चिंता, असफलता का डर, समय का गलत उपयोग, सामाजिक दबाव और भविष्य को लेकर अनिश्चितता, ये सारी परिस्थितियां युवाओं को प्रभावित कर रही है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे समय में श्रोता साथियों, बहुत जरूरी है कि युवा अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति की यात्रा बहुत अलग होती है, सफलता का रास्ता भी हर किसी के लिए अलग हो सकता है। इसीलिए असफलता आने पर रुक जाना समाधान नहीं है।
0: जी हाँ,
1: असफलता से सीखना और नई कोशिश करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
0: बिल्कुल,
1: परिवार, शिक्षक, समुदाय का सहयोग भी युवाओं के आत्मविश्वास को मजबूत करता है।
0: जी हाँ,
1: हम आपको कहना चाहेंगे श्रोताओं कि परिवर्तन, नवाचार और नेतृत्व तीन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका संबंध बहुत गहरा है।
0: बिल्कुल,
1: परिवर्तन हमें बताता है कशिश कि बदलाव बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: नवाचार हमें बताता है कि बदलाव का नया रास्ता क्या हो सकता है। नेतृत्व लोगों को उस रास्ते पर साथ देकर चलता है। अगर युवा में परिवर्तन की इच्छा है लेकिन नवाचार की सोच नहीं है, तो समाधान सीमित हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर नवाचार की सोच है लेकिन नेतृत्व नहीं है, तो अच्छा विचार जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि नेतृत्व है लेकिन सकारात्मक परिवर्तन का उद्देश्य नहीं है, तो नेतृत्व का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। इसीलिए
0: हाँ,
1: एक सशक्त युवा वो है जो सोचे भी, नया करे भी और दूसरों को साथ लेकर आगे भी बढ़े।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कहा जा सकता है युवा साथियों कि युवा होना केवल एक आयु नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यह वह समय होता है जब सपनों को लक्ष्य में बदला जा सकता है। चुनौतियों को अवसर बनाया जा सकता है और विचारों को वास्तविक परिवर्तन में बदला जा सकता है। जागृति जी, एक जागरूक शिक्षित और संवेदनशील युवा अपने परिवार, अपने समाज और देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
2: बिल्कुल,
0: ऐसे में साथियों हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना है कि हम अपने ज्ञान, कौशल, समय और ऊर्जा का उपयोग समाज की भलाई के लिए ही करेंगे। हम अपने गांव, अपने शहर, अपने देश को बेहतर बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।
2: जी हाँ,
0: हम नशा मुक्त, पर्यावरण के प्रति सजग और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। जब हर युवा, जागृति जी, अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ेगा, तभी एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा।
1: बिल्कुल कशिश, इसलिए हम ऐसी युवा शक्ति का निर्माण करें जो केवल अपने लिए सफलता न खोजे बल्कि अपने समाज के लिए समाधान खोजे, जो केवल बदलाव की बात न करे बल्कि बदलाव की शुरुआत करे, जो केवल नेतृत्व का पद न चाहे बल्कि जिम्मेदारी उठाने का साहस रखे, क्योंकि युवा की सोच में परिवर्तन की चिंगारी होती है, उसके विचार में नवाचार की रोशनी होती है, उसके कदमों में नेतृत्व की ताकत होती है। जब यही तीनों एक साथ आते हैं तो समाज की दिशा बदलती है और देश की गति बढ़ती है। यही युवा शक्ति की पहचान है, यही नवाचार की राह है और यही सच्चे नेतृत्व की शुरुआत है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं।
1: जी हाँ,

0: इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना,

ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों को स्थानीय संस्कृति, लोक गीत और लोक कलाओं से जोड़ना क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है वही पेड़ हर मौसम में मजबूती से खड़ा रहता है।
0: जी हाँ,
1: ठीक इसी तरह जो बच्चा अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं और अपने लोक जीवन से जुड़ा रहता है उसका व्यक्तित्व भी मजबूत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा होता है। आज के समय में जब बच्चे मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल मनोरंजन की दुनिया में तेजी से जुड़ रहे हैं तब उन्हें अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने लोक गीतों की मधुरता और अपनी लोक कथाओं की सीख से जोड़ना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को स्थानीय संस्कृति, लोकगीत और लोक कथाओं से जोड़ना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र की अपनी एक पहचान होती है, उसकी बोली, पहनावा, त्योहार, रीति रिवाज, लोकगीत, लोक नृत्य और लोक कथाएं मिलकर उसकी संस्कृति का निर्माण करते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, यही सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। यदि बच्चे इससे दूर हो जाएं तो धीरे धीरे हमारी परंपराएं केवल किताबों तक ही सीमित होकर रह जाएंगी। अंजलि जी,
1: जी जी,
0: इसलिए बच्चों को बचपन से ही अपनी स्थानीय संस्कृति से परिचित कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि लोकगीत जो है वो केवल गाने नहीं होते, बल्कि उनमें समाज का इतिहास होता है, प्रकृति के प्रति प्रेम होता है, रिश्तों की मिठास होती है और मेहनत, सम्मान और जीवन के अनुभव छिपे हुए होते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, इनमें ईमानदारी, साहस, सहयोग, दया, सत्य, प्रकृति प्रेम, बुद्धिमानी जैसे अनेक जीवन मूल्य सहज रूप से सिखाए जाते हैं। श्रोता साथियों, जब दादा दादी, नाना नानी या परिवार के बड़े बच्चों को लोक कथाएं सुनाते हैं तो केवल कहानी ही नहीं सुनाई जाती, बल्कि पीढ़ियों का अनुभव और जीवन की सीख भी आगे बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: आज कई बच्चे विदेशी पात्रों और काल्पनिक सुपर हीरो को पहचानते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लोक नायकों, लोक देवताओं, लोक कलाओं और पारंपरिक कहानियों से परिचित नहीं होते। यह स्थिति धीरे धीरे उन्हें अपनी जड़ों से दूर कर सकती है। इसलिए जरूरत है श्रोता साथियों की घर और स्कूल दोनों मिलकर बच्चों को अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ें।
0: बिल्कुल,
1: स्थानीय संस्कृति से जुड़ने का एक बड़ा लाभ यह है कशिश कि बच्चे अपनी भाषा बोली के प्रति सम्मान सीख पाते हैं। जब वे अपनी मातृभाषा में लोकगीत गाते हैं या लोक कथाएं सुनते हैं तो उनका भविष्य ज्ञान भी समृद्ध होता है।
0: जी हाँ,
1: इससे संवाद कौशल, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास हो पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, वहीं अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई सुंदर परंपराएं जीवित हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि फसल कटाई के गीत, वर्षा के स्वागत के गीत, त्योहारों के लोकगीत, पारंपरिक खेल और सामूहिक उत्सव, ये सभी चीजें श्रोता साथियों बच्चों को सामाजिक जीवन का महत्व सिखाते हैं। इन गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों में सहयोग, अनुशासन, सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, इन सभी चीजों में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि माता पिता सप्ताह में एक दिन बच्चों को लोक कथा सुनाए, दादा दादी अपने बचपन की कहानियाँ साझा करें, त्योहारों का महत्व समझाएं और पारंपरिक गीतों से परिचित कराएं तो बच्चे स्वाभाविक रूप से अपनी संस्कृति के करीब आएंगे।
1: बिल्कुल,
0: और ये जो जुड़ाव है वो किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि आनंद और अपनत्व के साथ होना चाहिए साथियों।
1: बिल्कुल कशिश, अब यही बात आती है कि विद्यालय भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत प्रतियोगिता, लोक कथा वाचन, स्थानीय कलाकारों से संवाद और पारंपरिक खेलों का आयोजन बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकता है। सामुदायिक रेडियो भी इसमें भूमिका निभा सकता है। रेडियो पर स्थानीय बोली में लोकगीत, बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई लोक कथाएं, लोक कलाकारों के अनुभव, पारंपरिक ज्ञान पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हम भी हमारे वागड़ रेडियो के माध्यम से श्रोता साथियों को ढेर सारी जो परंपरागत चीजें हैं उनके बारे में हमेशा अवगत करवाते रहते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी,
1: तो श्रोता साथियों इससे बच्चे युवा दोनों अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रह सकते हैं। इससे संस्कृति का संरक्षण भी होता है और नई पीढ़ी तक उसका सहज हस्तांतरण भी होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और पैरसी गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे आधुनिकता से दूर रहें, बल्कि यह है कि वे आधुनिक शिक्षा और तकनीक के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी समझें। आधुनिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को भूल जाना कभी भी प्रगति का संकेत नहीं हो सकता।
1: जी हाँ।
0: जिस बच्चे को अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है, वह दूसरे लोगों की संस्कृति का सम्मान करना भी सीखता है। जब बच्चे कशिश लोकगीत में गाते हैं, लोक कथाएं सुनते हैं, अपने क्षेत्र के त्योहारों में भाग लेते हैं और स्थानीय परंपराओं को समझते हैं, तब उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपने समाज के प्रति अपनापन बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: यही अपनापन आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो जब बच्चे लोकगीत गाते हैं, लोक कथाएं सुनते हैं और अपने क्षेत्रों के त्योहारों में भाग लेते हैं अंजलि जी, और साथ ही स्थानीय परंपराओं को समझते हैं, तब उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपने समाज के प्रति अपनापन बढ़ता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इस प्रकार स्थानीय संस्कृति, लोकगीत और लोक कथाएं केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी विद्यमान है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आधुनिक होने के साथ साथ संवेदनशील, संस्कारी, आत्मविश्वासी और अपनी पहचान पर गर्व करने वाले नागरिक बने साथियों, तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से अवश्य उन्हें जोड़ना होगा।
0: बिल्कुल,
1: यही जुड़ाव उन्हें जीवन भर अपनी जड़ों से जुड़े रहने की शक्ति देगा और साथ ही समाज को भी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाए रखेगा। अंजलि जी,
0: जी हाँ, यही कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि हर समाज की सबसे बड़ी पहचान उसकी संस्कृति होती है और हर संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत उसकी नई पीढ़ी होती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि बच्चे अपनी भाषा, लोकगीत, लोक कलाओं और परंपराओं को जानेंगे, तभी वे अपने समाज की असली पहचान को समझ पाएंगे।
1: जी हाँ,
0: यह जुड़ाव उन्हें केवल अतीत की जानकारी नहीं देता, बल्कि वर्तमान में सही निर्णय लेने और भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा भी देता है। अपनी संस्कृति को जानने वाला बच्चा दूसरों की संस्कृति का भी सम्मान करना सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उसे विविधता में एकता का महत्व समझ में आ जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में बच्चों के पास नई नई जानकारियों की कमी नहीं है, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ, लोकगीत और लोक परंपराएं उनसे धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि यह दूरी बढ़ती रही कशिश, तो आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास, अपने लोक नायकों और अपनी बोलियों और अपने सामाजिक मूल्यों से अनजान हो सकती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए यह समय केवल चिंता करने का नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय और समाज के स्तर पर छोटे छोटे प्रयास शुरू करने का है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों, तो घर में दादा दादी, नाना नानी के अनुभव जो होते हैं, साथ ही गाँव के बुजुर्गों की बातें, पारंपरिक त्योहारों की कहानियाँ, खेत खलियानों से जुड़ी लोक धुनें साथियों, ये सभी बच्चों के लिए किसी जीवित पुस्तक से कम नहीं है। इन अनुभवों के माध्यम से बच्चे केवल जानकारी नहीं प्राप्त करते, बल्कि धैर्य, सहयोग, प्रकृति प्रेम, परिवार का महत्व और सामुदायिक जीवन के मूल्य भी सीखते हैं अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: और यह सीख उन्हें एक संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनाती है। साथियों, हम सभी को यह समझना होगा कि आधुनिक शिक्षा और तकनीक का स्वागत करते हुए हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को साथ लेकर चलना ही वास्तविक प्रगति है। यदि बच्चा कंप्यूटर चलाना भी जानता हो और अपनी मातृभाषा का लोकगीत भी गा सके, यदि वह नई तकनीक का उपयोग भी करे और अपने गांव की परंपराओं का सम्मान भी करे,
0: जी जी,
1: तभी उसका विकास वास्तव में संतुलित माना जाएगा अंजलि जी, और यही संतुलन उसे वैश्विक सोच के साथ स्थानीय पहचान भी देता है।
0: जी हाँ कशिश, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि बच्चों को स्थानीय संस्कृति, लोकगीत और लोक कथाओं से जुड़ना क्यों जरूरी है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल,
0: अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो अड़स के थाते कार्यक्रम खेती बाड़ी तक पड़ा सूट आशा कर रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी आप तक जो भी बातें रही है ये आपने गमी होगा। तो आपने अमरु आज ना कार्यक्रम केव लगे एने बारा में आप राय सुझाव अमने आ सको अमरा अणा पता मत। अमरु पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। हजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमरा अणा फोन नंबर माते। हमारो फोन नंबर है 9414082643। इन्हें साथे भाई बोनो आप अमने ईमेल आईडी माते भी अपना राय सुझाव ली शको। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org। तो भाई बोनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक नया विषय ने हाते तारुदी राम राम
1: राम राम, राम, राम।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जया पेड़ की छांव में आपड़े रहो या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जया हवा में आपड़े हाल रहो, ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दूंगा, पानी में बचा दूंगा, मैं आपड़ी धरती में जीवन दान लूंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
5: होवे आज नाना कदम है ये अब्बा वाला काल में बदलाव की शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है अनुशासन को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि अंजलि, आज हमारे श्रोता साथियों को हम बताने वाले हैं कि सफलता को अक्सर हम प्रतिभा, मेहनत, ज्ञान और अवसर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इन सबको सही दिशा देने वाली एक ऐसी शक्ति भी है जो दिखाई नहीं देती, वो है अनुशासन। अनुशासन वो आदत है श्रोता साथी जो हमें सही काम को सही समय पर और लगातार करने की प्रेरणा देती रहती है। बड़ी उपलब्धियां हमें अचानक नहीं मिलती, वे रोज की छोटी छोटी अनुशासित कोशिशों से बनती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है, अनुशासन हर सफलता की अदृश्य ताकत है। जैसा कि अंजलि, सपने हर कोई देखता है, लक्ष्य हर कोई बनाता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिस शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसका नाम है अनुशासन। ये सफलता की वो अदृश्य ताकत है जो बिना शोर किए इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, मनुष्य के जीवन में सफलता केवल बड़े सपने देखने से नहीं मिलती।
0: बिल्कुल,
1: सपनों को लक्ष्य में बदलना, लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करना और कठिन परिस्थितियों में भी अपने कदमों को सही दिशा में बनाए रखना आवश्यक होता है। इस पूरी यात्रा में एक ऐसी शक्ति हमारे साथ चलती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारी हर उपलब्धि के पीछे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: बिल्कुल,
1: इस शक्ति का नाम है अनुशासन। जी हाँ श्रोता साथियों, हम अक्सर सफल लोगों को देखकर उनकी प्रतिभा, मेहनत और उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, लेकिन जागृति जी, उनकी सफलता के पीछे छिपी नियमितता, अनुशासन पर उतना ध्यान नहीं देते। वास्तव में श्रोता साथियों, अनुशासन वह आदत है जो व्यक्ति को यह सिखाती है कि मन चाहे या न चाहे, परिस्थितियां अनुकूल हो या विपरीत, हमें अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि अनुशासन को हर सफलता की अदृश्य ताकत कहा जाता है।
0: जी हाँ अंजलि, अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना या किसी के डर से निर्धारित कार्य करना नहीं है। श्रोताओं, अनुशासन का वास्तविक अर्थ है स्वयं को सही कार्य के लिए तैयार रखना और अपने समय, विचार, व्यवहार तथा इच्छाओं को उचित दिशा देना। अगर कोई विद्यार्थी रोज पढ़ाई करने का निर्णय लेता है, अपने मन को मोबाइल, खेल या अन्य मनोरंजन से हटाकर पढ़ाई पर लगाता है तो ये आत्म अनुशासन है। अगर कोई व्यक्ति समय पर अपना काम पूरा करता है, दूसरों की जिम्मेदारियों का सम्मान करता है और अपने वादे को निभाता है तो ये भी अनुशासन का ही उदाहरण है। इसीलिए अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नियम नहीं है बल्कि भीतर से विकसित होने वाली आदत है।
1: जी हाँ जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सफलता के लिए प्रतिभा जरूरी हो सकती है, लेकिन केवल प्रतिभा के भरोसे सफलता प्राप्त करना कठिन है। कह सकते हैं श्रोता साथियों कि किसी व्यक्ति में बहुत अच्छी क्षमता हो, लेकिन वह अपने समय का सही उपयोग न करे, काम को टालता रहे और अपने लक्ष्य के प्रति नियमित न रहे तो उसकी प्रतिभा भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी।
0: बिल्कुल,
1: इसके विपरीत जागृति जी, सामान्यतः क्षमता वाला व्यक्ति यदि नियमित रूप से मेहनत करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपने लक्ष्य के प्रति अनुशासित रहता है तो वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। यही कारण है कि सफलता में केवल यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम कितना जानते हैं, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जो जानते हैं उसे कितनी नियमितता से अपने जीवन में लागू करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध समय से होता है। समय हर व्यक्ति को बराबर मिलता है, किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अंतर केवल इस बात से पैदा होता है कि कौन अपने समय का सही उपयोग कर सकता है।
1: जी जी,
0: अनुशासित व्यक्ति अपने समय की प्राथमिकताएं तय करते हैं। वो ये समझते हैं कि कौन सा काम अभी करना जरूरी है और कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। वो जरूरी काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे युवा साथी है, श्रोता साथी है, उन्हें जीवन में समय प्रबंधन के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि पढ़ाई, खेल, परिवार, आराम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाना भी तभी संभव है जब समय का सही उपयोग किया जाए। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में व्यवस्था और स्पष्टता विकसित करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि किस तरीके से अनुशासन हर सफलता की अदृश्य ताकत है।
0: बिल्कुल,
1: इसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से यह हमें समय प्रबंधन और अनुशासन के बारे में सिखाता है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: सफलता अक्सर छोटी छोटी अनुशासित आदतों का ही परिणाम है।
1: जी हाँ अंजलि, मनुष्य के सामने हर दिन बहुत सारे विकल्प होते हैं। हम देखते हैं कि कभी हमें पढ़ाई करनी होती है लेकिन मन मनोरंजन करने का कहता है, कभी कोई जरूरी काम पूरा करना होता है लेकिन उसे टालने का मन करता है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, हमें अपने मन को सही दिशा देनी होगी। हमारे मन पर हमें आत्मनियंत्रण रखना होगा। अनुशासन हमें ये सिखाता है कि हर इच्छा को हमें तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हमें अभी अच्छी लग सकती है लेकिन हमारे भविष्य के लिए जरूरी नहीं होती कि वो अच्छी हो। इसी तरह दूसरी ओर कुछ काम कठिन लग सकता है लेकिन वही हमारे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
0: जी जी।
1: जो व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवहार और इच्छाओं को अपने भविष्य के लक्ष्य के अनुसार नियंत्रित करना सीख जाता है उसके लिए सफलता की राह आसान हो जाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार निरंतरता है। किसी काम को एक दिन बहुत मेहनत से करना और फिर कई दिनों तक छोड़ देना उतना प्रभावी नहीं होता जितना रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक दिन 10 घंटे पढ़ाई करे और अगले कई दिनों तक किताबें न खोले तो उससे बेहतर कि वह रोज कुछ घंटे नियमितता से पढ़ाई करे।
1: बिल्कुल।
0: नियमितता ज्ञान को मजबूत करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसी तरह किसी कौशल को सीखना हो, खेल में बेहतर प्रदर्शन करना हो या कोई रचनात्मक कार्य करना हो श्रोता साथियों, तो निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अनुशासन व्यक्ति को इसी निरंतरता से जोड़ता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे अंजलि कि जैसे कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी हमें असफलता मिलती है। कभी रास्ता हमारे लिए आसान हो जाता है, कभी बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह श्रोता साथियों, ऐसे समय में जो अनुशासन होता है अंजलि, वो व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता है।
0: जी जी।
1: वो असफलता को अंतिम परिणाम मानने के बजाय एक अनुभव के रूप में देखता है। वह अपनी गलतियों को समझता है, अपनी रणनीति में बदलाव करता है और फिर प्रयास शुरू कर देता है। इसी तरह अनुशासन हमें ये भी सिखाता है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होती लेकिन अपनी प्रतिक्रिया और अपने प्रयासों को नियंत्रित करना हमारे हाथ में ही होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, विद्यार्थी जीवन भविष्य की नींव रखने का समय होता है। इस दौरान विकसित हुई आदतें जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए एक अनुशासित विद्यार्थी केवल परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं करता बल्कि पूरे वर्ष नियमित रूप से सीखने का प्रयास करता है।
1: बिल्कुल।
0: वह शिक्षकों का सम्मान करता है, समय पर पूरा कार्य करता है और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश भी करता है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि विद्यार्थी हर समय केवल पढ़ाई करता रहे। पर्याप्त आराम, खेल, मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताना भी आवश्यक है। सही अनुशासन जीवन के सभी क्षेत्र में संतुलन बनाना सिखाता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, किसी भी देश की ऊर्जा और शक्ति युवा ही होते हैं। उनके पास नए विचार होते हैं, नई तकनीक सीखने की क्षमता होती है और बदलाव लाने का उत्साह होता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अंजलि, अगर ये ऊर्जा सही दिशा में न जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आज के डिजिटल युग में युवाओं के सामने बहुत सारे आकर्षण है, सोशल मीडिया है, मनोरंजन है, लगातार मिलने वाली नई सूचनाएं ध्यान को आसानी से भटका सकती है।
0: जी जी।
1: ऐसे समय में अनुशासन का महत्व और भी बढ़ जाता है। युवाओं को तकनीक का उपयोग अपने ज्ञान कौशल और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए करना होगा। उन्हें अपने समय की प्राथमिकताएं तय करनी होगी और अपने भविष्य के लक्ष्य के प्रति उन्हें गंभीर रहना होगा।
0: बिल्कुल।
1: एक अच्छा नेता केवल दूसरों को निर्देश नहीं देता बल्कि स्वयं भी नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित होता है वह दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि परिवार में माता पिता का अनुशासन बच्चों को प्रभावित करता है। विद्यालय में शिक्षक का समय और नियमों के प्रति सम्मान विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। किसी संस्था में जिम्मेदार व्यक्ति की कार्यशैली पूरी टीम पर प्रभाव डालती है। इसी प्रकार श्रोता साथियों, अनुशासन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है बल्कि अच्छे नेतृत्व की भी आधारशिला है।
1: जी हाँ।
0: यदि प्रत्येक व्यक्ति जागृति जी अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हो तो समाज में अनेक समस्याएं स्वतः ही कम हो सकती है। यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई रखना, पानी और बिजली की बचत करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सामाजिक अनुशासन के उदाहरण है।
1: बिल्कुल।
0: देश की प्रगति केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिक का अनुशासन भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल।
0: जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता है श्रोता साथियों, तो समाज अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित और मजबूत बन पाता है।
1: जी हाँ अंजलि, कई बार अनुशासन को कठोर नियम या प्रतिबंध समझ लिया जाता है लेकिन वास्तविक अनुशासन डर पर आधारित नहीं होता, वो जिम्मेदारी और आत्मसम्मान पर आधारित होता है। अगर हम केवल किसी के डर से नियमों का पालन करते हैं तो अवसर मिलते ही नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि नियम हमारे और समाज

0: के हित के लिए है, तब हम उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानकर अपनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए सच्चा अनुशासन बाहर से थोपने की चीज नहीं बल्कि भीतर से विकसित करने की आदत है।
1: बिल्कुल जागृति जी, मेहनत और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। मेहनत व्यक्ति को आगे बढ़ाती है जबकि अनुशासन उस मेहनत को सही दिशा में निरंतरता देता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि मेहनत बिना योजना के हो तो ऊर्जा व्यर्थ हो सकती है। यदि योजना हो लेकिन उसे लागू करने का अनुशासन न हो तो लक्ष्य केवल कागज पर रह सकता है। इसलिए सफलता के लिए मेहनत के साथ सही दिशा और नियमितता भी जरूरी है। यही कारण है श्रोता साथियों कि जीवन में केवल यह तय करना पर्याप्त नहीं है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं।
0: जी हाँ।
1: हमें यह भी तय करना पड़ता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोज हमें क्या क्या करना होगा।
0: बिल्कुल अंजलि, तो अंत में बस यही कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि अनुशासन वो दीपक है जो सफलता की राह में लगातार प्रकाश देता है। इसकी रोशनी तेज नहीं होती लेकिन ये लंबे समय तक रास्ता दिखाती है।
1: जी जी।
0: इसलिए अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो केवल सपना देखने तक सीमित न रखे, आज से छोटी सी शुरुआत करें, अपनी आदतों को व्यवस्थित करें और अपने प्रयासों में निरंतरता लाएं।
1: जी जी।
0: क्योंकि सफलता का शोर दुनिया सुनती है लेकिन उसके पीछे चलने वाले अनुशासन की खामोशी मेहनत केवल वही व्यक्ति समझता है जिसने उसे जिया है। और अंततः यही कहा जा सकता है कि प्रतिभा हमें शुरुआत दे सकती है, अवसर हमें रास्ता दे सकता है और मेहनत हमें आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अनुशासन ही वो अदृश्य ताकत है जो हमें लगातार मंजिल की ओर ले जाती है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी बातें कार्यक्रम में ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले मनोरंजन कर लेते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वाग धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाइनो बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरा ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बजली बम गीत आंशु पूरु अना गीत बाद एक युगत फेरे अपने भाई बहनों नो स्वागत कर रहा कार्यक्रम घूमर में जेम के गीत के पहले विषय बताड़ियो हतु कि आज अपन बात करवा वाला हूं हरियाली अमावस्या नु महत्व ने लेने भाई बहनों अपन देखा हूं कि अपनी वागड़ ने पहचान हरियाली पहाड़ी नु भूदृश्य जंगल ने खेत ने अपनी विशिष्ट जे लोक संस्कृति है वेणखती थाय है अपन देखा हूं कि अंजलि बहन साटा पड़वा मौसम आवता मस अपन देखा हूं कि अपने धरती में नवी जान आवी जाए है खेत में हरियाली है वे लहरावा मंडी जाए है रास्तन किनारो जी रहे वहां सारो उगी जाए है पेड़ पौधन भी जीवन आवी जाए है बहन बहन अपन देखा हूं कि हरियाली अमावस्या और प्रकृति नु बदलाव नु उत्सव नु अवसर है अंजलि बहन अपन देखा हा कि आपने जी पुरानी पीढ़ी हती वने प्रकृति खाली वस्तु नहीं मान्यू है बल्कि वन ने हाथे सह अस्तित्व नो संबंध भी बनाव्यो है पेड़ खती फल मल्यो ते वने बीज बसाव्यो ने पशु खती चारो मल्यो ते वने चारागाह ने सुरक्षित राख्यो ने पानी मल्यो ते तालाब ने कूवा ने संभाली ने राख्यो बहन बहनों आज आवश्यकता नी बात नी है कि आपने जी पहली सोच हती वेने आपने अना टाइम ने भी मजबूत बनावी ने राखो
1: હવે મનીષા બોન આય સવે વાત કરો કે આ જે પર્વ હે ઈ આપણી બોનો તકી હરતે જુડ્યો તકો હે તો આપણે દેખો હ કે વાગડ ક્ષેત્ર મે જે આપણે બોને હે ઈ અણી ચીજ મે ઘણી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાય હે ઘર હંબારે હે ખેતી કરે હે પશુપાલન કરે હે બીજ નું સંરક્ષણ કરે હે પશુ બલ્લે સારો જુટાવે હે એને સાથે આપણે જે રસોઈ હે એને બલ્લે ઈંધન ને પાણી ની વ્યવસ્થા ને પરિવાર બલ્લે ખાદ્ય ની જે જરૂરત હે એને अवरी ने राखवा में भी योगदान आले हैं। एटले प्रकृति में थावा वारा कोई भी बदलाव है

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: વાગડ રેડિયો એવં વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત।

साथियों, उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी हो तो बदलाव की शुरुआत हो सकती है। हाथों में ताकत हो और मन में सही दिशा तो एक युवा केवल अपना भविष्य नहीं पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूँ आप सब

अभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। हाजिर हो चुकी हूँ श्रोता साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान को, जहाँ हम बात करते हैं उन विचारों की जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं और हमें अपने आसपास बहुत कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। आज का दिन हमारे देश और दुनिया के युवाओं को समर्पित है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। श्रोता साथियों, यह दिन केवल युवाओं को शुभकामनाएं देने का दिन नहीं है, बल्कि यह सोचने का अवसर है कि हमारे युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और समाज उनके भीतर छिपी ऊर्जा का सही उपयोग कैसे कर सकता है। आज का हमारा कार्यक्रम का विषय रहेगा, युवा होना सिर्फ उम्र नहीं एक जिम्मेदारी है। बातें ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने कार्यक्रम में आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है कि युवा होना सिर्फ उम्र नहीं, एक जिम्मेदारी है। जी हाँ श्रोता साथियों, युवा आखिरकार होते कौन है? जब हम युवा शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने अक्सर पढ़ाई करते हुए लड़के लड़कियां, नौकरी की तलाश करते युवा या कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी आते हैं। लेकिन युवा होने का अर्थ केवल एक निश्चित उम्र में होना नहीं है। युवा वह है जिसके भीतर कुछ नया करने की इच्छा है, जो सवाल पूछ सकता है, जो गलत चीज को देखकर कह सकता है कि इसे बदलना चाहिए, जो समस्या के सामने बैठकर केवल शिकायत नहीं करता बल्कि समाधान खोजने की कोशिश करता है। यही युवा शक्ति है। जी हाँ साथियों, युवा शक्ति केवल बड़े शहरों में नहीं है, हमारे गांवों में भी ऐसे हजारों युवा हैं जो खेती में नई तकनीक सीख रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, छोटे व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खेलों में आगे बढ़ रहे हैं और अपने गांव में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी गांव का युवा अगर अपने खेत में नई तकनीक अपनाता है तो वो केवल अपनी खेती नहीं सुधारता, किसी युवा लड़की का शिक्षा जारी रखना केवल उसके भविष्य को नहीं बदलता है दोस्तों, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ता खोलता है। कोई युवा अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता है तो वह केवल कुछ घंटे नहीं देता, वह भविष्य तैयार करता है। जी हाँ, एक छोटी सी बात, युवा शक्ति का मतलब केवल तेज कदम नहीं, सही दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि ऊर्जा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन उस ऊर्जा को सही दिशा देना ही असली चुनौती है। जी हाँ, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि आज युवाओं के सामने अवसर भी हैं और कई सारी चुनौतियां भी हैं। जैसे कि बात करें, युवाओं के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी की कोई कमी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पास सही जानकारी चुनने की समझ भी है? जी हाँ दोस्तों, आज एक युवा कुछ ही मिनटों में दुनिया भर की जानकारी देख सकता है, लेकिन उसे मोबाइल पर वह घंटों बिना उद्देश्य के भी समय बिता सकता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी के सामने केवल अवसरों का सवाल नहीं है, सवाल है कि वह अपने अवसरों का इस्तेमाल किस दिशा में करेंगे, क्योंकि सही दिशा में किया गया कार्य ही हमें विकास की राह पर ले जाता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया युवाओं के लिए बहुत उपयोगी साधन हो सकता है। इसके माध्यम से सीख सकते हैं, नई भाषा का ज्ञान ले सकते हैं, किसी कौशल की जानकारी ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने उत्पाद या कला को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यही माध्यम समय की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इसलिए मोबाइल को अपना मालिक नहीं, अपना साधन बनाइए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मोबाइल हाथ में होना समस्या नहीं, मोबाइल का नियंत्रण हमारे हाथ से निकल जाना समस्या है। हम अक्सर कहते हैं ना दोस्तों कि देश का भविष्य युवा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई में देश का भविष्य बनाने वाले पहले युवा आज क्या कर रहे हैं? जी हाँ, क्या वह अपने घर की जिम्मेदारी समझ रहे हैं? क्या वह अपने गांव और समाज की समस्याओं को समझते हैं? क्या वह सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं? क्या वह महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं? क्या वह गलत सूचना फैलाने से पहले उनकी सच्चाई जांचते हैं? क्या वह अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं? श्रोता साथियों, युवा शक्ति का असली अर्थ यहीं से शुरू होता है। अगर इन सवालों के जवाब हर किसी के पास है कि हाँ वाकई में युवा ये सारी चीजें करते हैं, तो वही युवा और जिम्मेदारी का सच्चा अर्थ है। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

विषय को लेकर सरकारी नौकरी से जोड़कर देखते हैं। नौकरी महत्वपूर्ण है, ये हम सभी मानते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते केवल एक नहीं होते। कृषि में कई सारे अवसर हैं, पशुपालन में अवसर हैं, हस्तशिल्प में अवसर हैं, डिजिटल काम में भी कई सारे अवसर हैं, छोटे व्यवसाय में अवसर हैं, कौशल आधारित काम में अवसर हैं। जरूरत है अपनी रुचि और क्षमता को पहचानने की। हर युवा का रास्ता एक जैसा नहीं हो सकता। दोस्तों, किसी दूसरे की मंजिल देखकर अपना रास्ता हमें कभी नहीं चुनना चाहिए। अपने भीतर की क्षमता पहचानिए, अपनी खुद की राह बनाइए, क्योंकि युवा अवस्था वह समय है जब सवाल पूछना भी ताकत है और नई शुरुआत करना भी। इसलिए हमारे समुदाय में कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान युवा बेहतर ढंग से आगे बढ़कर कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा से दूर बच्चे, स्वच्छता की समस्या, जल संरक्षण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, नशे से बचाव, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता, महिलाओं का सम्मान, डिजिटल जानकारी का सही उपयोग। इन विषयों पर केवल भाषण देने की जरूरत नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि एक युवा अपने छोटे से प्रयास से शुरुआत कर सकता है। मान लीजिए कि किसी गांव में 5 युवा मिलकर तय करते हैं कि वे हर रविवार को 1 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई दूसरा समूह गांव में पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। कुछ युवा मिलकर खेल गतिविधियां शुरू करेंगे। कुछ युवा बुजुर्गों के डिजिटल कामों में मदद करेंगे। देखिए, शुरुआत छोटी है लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बदलाव के लिए हमेशा भीड़ की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी 5 जागरूक युवा भी काफी होते हैं। युवा दिवस पर युवा लड़कियों की बात करना भी उतना ही आवश्यक है। आज गांव और छोटे कस्बों की बेटियां शिक्षा, खेल, विज्ञान, व्यवसाय, कला और अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी भी कई लड़कियों को अवसर की कमी, सामाजिक दबाव और निर्णय लेने की सीमाओं का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस बात की है श्रोता साथियों कि बेटियां परिवार को केवल सुरक्षा नहीं, विश्वास और अवसर भी दें, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, वो अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी को भी आगे बढ़ाती है। जी हाँ श्रोता साथियों, युवा और बुजुर्गों को अक्सर 2 अलग पीढ़ियों के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे से सीखें तो यह बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। बुजुर्गों के पास अनुभव है तो युवाओं के पास नई तकनीक और नई ऊर्जा है। बुजुर्ग परंपरा समझते हैं तो युवा नए रास्ते खोज सकते हैं। यदि अनुभव और ऊर्जा साथ आ जाए तो समुदाय में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा जब साथ चलते हैं तो समाज की राह आसान हो जाती है। जी हाँ श्रोता साथियों, आज युवाओं पर कई तरह के प्रभाव है। दोस्त क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कौन प्रसिद्ध है, किसके पास क्या है और कौन कहाँ घूम रहा है। लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि मैं कौन हूँ, मुझे किस तरह का इंसान बनना है। अपनी पहचान दूसरों की नकल से नहीं बनती, अपनी पहचान अपने विचार, व्यवहार और कर्मों से बनती है। इसलिए श्रोता साथियों, आप जहाँ भी हैं खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर मेरा गांव और मेरा परिवार और मेरे समाज में कोई एक चीज बदलने का अवसर मुझे मिले तो मैं सबसे पहले क्या बदलना चाहूंगा। इसका उत्तर कागज पर लिखिए और फिर खुद से दूसरा सवाल पूछिए कि उस बदलाव के लिए मैं आज से क्या छोटा कदम उठा सकता हूँ। यहीं से युवा शक्ति की असली शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन केवल एक छोटा सा संकल्प हम सभी ले कि हम अपने समय का सम्मान करेंगे, हम अपने शरीर और मन का ध्यान रखेंगे, हम गलत जानकारी को आगे नहीं फैलाएंगे, हम अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, हम बेटियों और महिलाओं के सम्मान को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, हम अपने गांव और आसपास के वातावरण को बेहतर रखने में योगदान देंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं करेंगे बल्कि अपने समाज के भविष्य में भी योगदान देंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उम्र की पहचान चेहरे से नहीं, विचारों से होती है। युवा वही है जिसके भीतर सीखने की चाह अभिजीवित है। जी हाँ दोस्तों, रास्ते कठिन हो तो हिम्मत बनाए रखनी होगी, अवसर कम हो तो रास्ते बनाइए। दुनिया बदलने की जल्दी मत करिए, पहले अपने हिस्से की दुनिया संवारिए। श्रोता साथियों, युवा होना जीवन का वह दौर है

जब हमारे पास ऊर्जा होती है, सवाल होते हैं, नई चीजें सीखने की क्षमता होती है और अपने भविष्य को आकार देने का अवसर होता है। लेकिन इस ऊर्जा को असली कीमत तभी मिलती है जब इसे सही दिशा मिले। हमारे युवाओं को केवल यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम देश का भविष्य हो, उन्हें आज के समाज में अपनी भूमिका निभाने का अवसर भी देना होगा। उन्हें सुनना होगा, उन पर भरोसा करना होगा और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना होगा। जी हाँ, युवाओं को यह भी समझना होगा कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। अपने लिए अच्छा भविष्य बनाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा कहीं जरूरी है भविष्य में अपने परिवार, अपने गांव, अपने समुदाय और अपने देश के लिए भी कुछ कार्य करना। क्योंकि युवा शक्ति केवल उम्र की ताकत नहीं है, यह विचारों की ताकत है, सवाल पूछने की ताकत है, सीखने की ताकत है और कुछ बेहतर करने की हिम्मत है। अगर युवा साथियों, आपके पास ऊर्जा है तो उसे सही दिशा दीजिए। अगर आपके पास सपना है तो उसे समाज से जोड़िए। अगर आपके पास हुनर है तो किसी और को भी सिखाइए। और अगर आपके पास कुछ बदलने का विचार है तो शुरुआत का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव की पहली आवाज अक्सर किसी युवा के मन से ही निकलती है। तो युवा दिवस पर केवल अपने सपनों की उड़ान न भरें, ऐसी उड़ान भरें जिसकी छाया हमारे परिवार, हमारे गांव और हमारे समाज तक पहुंचे। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से आज कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमने जाना कि युवा होना सिर्फ उम्र नहीं है, एक जिम्मेदारी है। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि कार्यक्रम में जो गीत संगीत और बातें रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। बागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने में देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति।